0: छाया गीत लग जागने। हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: فرحت ناز. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं. नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नीतियों में भी व्यापक बदलाव कर रही है. प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है. और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो. गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है. ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है.
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी. बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे. राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी. युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे. सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की. 57वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा. बैठक को संबोधित करते हुए डॉ मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया. सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है ताकि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए. भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है. भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं. भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है. ग्रामीण विकास मंत्रालय की सशक्त समिति ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत प्रस्तावों की समीक्षा की. बैठक का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को मजबूत और व्यापक बनाना तथा स्वयं सहायता समूहों के छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाकर विकासोन्मुख व्यवसायों में बदलने का मार्ग तैयार करना था. बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल ने की. झारखंड के रामगढ़ जिले में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड स्टील पावर प्लांट में कल रात टरबाइन में तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई. इस हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम काम नहीं कर पाया. इससे टरबाइन की गति अचानक बढ़ गई और इसमें विस्फोट हो गया. प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में बढ़ते तापमान और पर्याप्त कूलिंग व्यवस्था नहीं होने की जानकारी प्रबंधन को पहले से ही दी गई थी लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ. हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं. एक केमिकल रिएक्टर के अचानक फटने से औद्योगिक इकाई में जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई. रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है. भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है. उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया. एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टर्डम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.

0: कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें।

0: वाले और छपे हुए पोस्ट कार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं केवल पोस्ट कार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
0: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: तो भाई मनचाही गीत कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू किया जाए और आप सभी श्रोताओं की चिट्ठियां आई हैं। नागपुर जिला पाटन सावंगी से गजानन लिखार, मनोज लिखार और संचना लिखार, महमूद आरिफ, आरिफ फातिमा, एम एच शरीफ, आरिफ हुसैन और साथियों की चिट्ठी रामना हल्ली बेंगलोर से आई है। और ये जो चिट्ठी है मौजे गोवर्धन जिला वाशिम से रविन्द्र पवार, मीना पवार और श्रीकांत की है। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन और महेंद्र जैन की चिट्ठी। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश। और इसके अलावा हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन, न्यूटन चिखली, परासिया, छिंदवाड़ा से अनिल वाघ, संगीता वाघ, रविन्द्र वाघ, वंदना वाघ, अंकेश वाघ, अनुतेश वाघ और ऋतिक वाघ की फरमाइश पर ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार, गुलजार, राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम आंधी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

विविध भारती पर आप मन चाहे गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं और जी हाँ बिल्कुल सही झलक सुनाई दी आपको, यही गाना आगे बजने वाला है। लेकिन पहले उन श्रोताओं के नाम तो आपको बता दें जिनकी चिट्ठियां हमें मिली हैं। पुणे से पंकज वडोदे, आर्या, प्रियंका, वीटी वडोदे और चंद्र प्रभा वडोदे, और ये चिट्ठी अलंकार मार्केट देवा से मकबूल हुसैन बोहरा, मुस्तफा हुसैन और नजमुद्दीन की है। बाबू रामानंद, बीना आनंद और खुशी आनंद ने नंदग्राम गाजियाबाद से हमें खत लिखा है। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया और प्यारे बाबू, और गोल बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज और प्रमोद, आनंद रत्नानी, अजय, रेखा रत्नानी, अभय, भाग्या और मीरा रत्नानी ने नर्मदापुरम से इस गाने की फरमाइश भेजी है। सुनते हैं हीरांझा फिल्म का गाना।

अगले गाने के लिए आप सभी की फरमाइश आई हैं। छत्तीसगढ़ बेमित्रा जिला से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, सुनील कुमार, वीरेंद्र सारथी, रुद्र कुमार और ब्रिज कांत सारथी, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहू, रंजीत कौर मन्नत, गुरकीरत और गुरुशब्द सिंह राहुल, आदर्श रेडियो श्रोता संघ कन्हरिया बाजार पूर्णिया से दिलीप कुमार सेंचुरी, बिमला रानी सेंचुरी, शिम्पी रानी साह, सुरेश लाल साह और अमित राजा। और ये फरमाइश आई है कर्नाटक बेंगलोर से मेनका नतारा की। इसके अलावा जी यही एक नाम है और अनीता, प्रीति, येसु और निसार की फरमाइश है। और कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष शर्मा, बिट्टू जैन और दीपक जैन की लुधियाना पंजाब से फरमाइश हमें मिली है। इसके अलावा एक और चिट्ठी, और वो चिट्ठी भेजी है पूरे बाकड़े परिवार ने, जिसमें पवन कुमार, ज्योति ताई, संतोष राव बाकड़े शामिल हैं।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है।

0: इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। मनचाही गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अगली फरमाइश है चेतक सर्कल उदयपुर से मुकेश जीनकर, रेणु जीनकर, अजय प्रिंस और कुलदीप की शाहूनगर यवतमाल से, राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, स्वीटी बेबी प्रियांशी, कस्बा हरदुआगंज अलीगढ़ से मुन्ना खानसारी, शहीद अहमद, नफीस अंसारी, अनाविया अजान और अयान, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाहबख्श, बेगम राबिया, रहीम मुन्ना, महीन फातिमा, अदीब, दानिश, आसिफ, जोहरान शेख, मालवा मिल कंपाउंड इंदौर से प्रमिंद्र कुशवाहा, कैलाश कुशवाहा, रमेश कुशवाहा, मंजू चौहान और कामिनी चौहान। कलाकार फिल्म का गाना इंदीवर की बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज, किशोर कुमार की आवाज।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सभी की फरमाइश है, महादेव डोंगरे राधा नगरी कोल्हापुर से। ये श्रोता संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके साथी घंटाघर चौक खंडवा के श्रोता हैं। काटोल नागपुर से सुरेश मलमकार, श्रीमती रजनी मलमकार। ये फरमाइश बीड शहर से रंजीत कुमार, नामदेव थोरात, रितेश, आकाश, रंजना, रश्मि और गबरू पहलवान की, महेंद्र सटकरकडे, विजया सरकटे और मिलिंद वरुण जौल का से, और वर्धा से दिलीप खैर का, शोभा रविंद्र सारिका और स्वरा।

नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक जैसी करनी वैसी भरनी। लेखक रोमी शिराज, निर्देशक मुद्रा राक्षस।

0: सुभद्रा
1: ये मकान मालिक तो कुछ करता नहीं, इतने दिन से कहा जा रहा है, छत तक ठीक नहीं करवाई, अब देखो ये देखो जगह जगह से टपक रही है।
0: अरे मैं कहता हूँ तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं? शाम को जो चाट खाई थी लगता है बहुत खराब थी, खाकर खाकर और तबीयत खराब हो गई।
1: तुम्हारी तो तबीयत ही खराब रहती है।
0: अरे ऊपर कुछ ऐसी आवाज हुई जैसे कोई कूदा हो।
1: अरे तेज हवा की वजह से कुछ गिर गया होगा।
0: हा?
1: तुम भी बस बुढ़ापे में लगता है ज्यादा सुनने लगे हो।
0: क्या क्या क्या? अरे अरे अरे जी जी जी जी क्या बात हुई है? क्या बात हुई है? मैं बूढ़ा कब से हो गया जी है? कब बूढ़ा हुआ मैं? कौन आ गया?
2: कौन? जीवनलाल जी यहीं रहते हैं क्या?
3: अरे भाई दरवाजा खोलिए।
0: कौन है देखूं तो जरा।
2: कौन है?
0: अरे पुलिस।
2: जीवनलाल जी आप ही हैं?
3: हाँ यही है जीवनलाल जी। अरे बाबा बहुत गंडगोल हो गया है। तुम्हारा जो फादर था ना,
0: हाँ।
3: वो हमारा पागल खाने में सुसाइड कर लिया।
0: क्या?
3: ये इंस्पेक्टर साहब बोलता है उसका लाश को आइडेंटिफाई करना है।
0: हाँ।
3: अभी चलना है।
0: अच्छा अच्छा चलता हूँ, जरा कपड़े पहन लूँ, अभी आया।
1: बात क्या है? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं?
0: पागल खाने से इंस्पेक्टर साहब खबर लाए हैं।
1: पागल खाने से क्या?
0: पिताजी ने आत्महत्या कर ली है।
1: आत्महत्या?
0: हाँ।
1: कब? जब तक जिंदा थे तब तक तो हमारे लिए मुसीबत थे ही, अब मरकर भी चैन नहीं लेने देंगे।
0: अरे ये सब बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। लाओ देखो मेरा छाता कहाँ रखा है, लाओ जरा।
1: अरे अरे इस आंधी तूफान में कहाँ निकले जा रहे हो? कल सुबह चले जाना।
0: अरे बेकार की बातें मत करो, अभी जाना होगा मुझे, इंस्पेक्टर साहब लेने आए हैं मुझे।
1: लो अब उनकी वजह से द्वारे पुलिस आकर भी खड़ी हो गई।
0: बकबक बंद करो, देखो भाई छाता कहाँ रखा है, और सुनो कुछ पैसे भी दे देना। मेरा कुर्ता कहाँ रख छोड़ा है?
1: कुर्सी के पीछे टंगा तो है।
0: हाँ हाँ
1: ये लीजिए।
0: हाँ हाँ अच्छा सुनो मैं चलता हूँ, वो गुड्डू के हाथ अपने देवर को भी खबर भिजवा देना।

0: आइए, इस तरफ से आइए।
1: जी, वेरी सैड, वेरी सैड। वो कल दोपहर से ही गायब था, आज पागलखाना का पीछे का कुआं से उनका लाश को निकला गया। हाँ,
2: अरे
1: शायद वो कुआं में कूदकर ही उन्होंने जान दे दिया। हाँ, वो ना अंदर है। ओरे बाबा, तुम्हारा फादर, माय गॉड, अजीब मैन था, माय गॉड, कल से गायब। इधर ढूंढा उधर ढूंढा, माय गॉड, पता नहीं कब कुआं में गिर गया।
2: कुएं में कूद गया। अरे डॉक्टर साहब, आपको अपने रोगियों का ख्याल तो रखना चाहिए।
1: ओरे बाबा, की रकम बात करता है तुम। हम सभी का पूरा ख्याल रखता है, खाना कपड़ा।
2: हाँ, सब जानता हूँ, खाना कपड़ा। अरे इस तरह का खाना तो शायद जानवर भी खाना पसंद नहीं करेंगे, और कपड़ा, शायद ही किसी मानसिक रोगी को कपड़े पहने देखा हो हमने।
1: माय गॉड, जब पागल लोग अपना कपड़ा फाड़ देगा तो कोई कितना बार पहनाएगा।
2: अरे डॉक्टर साहब, आपके पास तो हर चीज का जवाब हाजिर है।
1: जीवनलाल बाबू, ये सब बात तो होता रहेगा, पहले आप डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब,
0: अच्छा।
1: आप चलिए, हम कल सुबह इनको थाने भेज देगा।
0: अच्छा,
2: कितनी बदबू है यहाँ।
1: ए देखिए, इनको पहचानता है?
2: जी जी यही है, यही मेरे पिताजी हैं। इनका इनका ये शरीर इतना फूल कैसे गया?
1: तुम्हारा फादर, माय गॉड, ऐसा पागल तो हमने अपना लाइफ में कभी नहीं देखा। कभी बोलता हम पागल नहीं, कभी बोलता हम पागल है। कई बार पांच पांच दिन खाना नहीं खाता, और कभी जितना दो बोलता और लाओ, नहीं देने से सब कुछ।

0: छोटा, ओ ओ देखो ओ खिड़की का ग्लास साहब उसी ने तोड़ा, माना करा तो हम पर अंडा खींच कर मारा। रियली ही वाज ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए लूनेटिक।
1: मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर साहब मेरे बेटा को घसा कर लीजिए, उन्होंने मुझे यहाँ बंद कराया है, मैं पागल नहीं हूँ।
0: ओए बाबा, ये यहाँ कहाँ से आ गया? ए, तुम उधर चलो, उधर चलो तुम।
1: मैं पागल नहीं,
0: इधर आ जाओ, तुम कम बोलता है।
1: पागल नहीं हूँ,
0: चलो बाहर जाओ।
2: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये कौन है?
0: पागल है, इसका लड़का लोग छोड़ गया था।
2: हाँ, लड़का लोग छोड़ गया था।
0: हाँ,
2: लेकिन देखने से तो पागल नहीं लगता।
0: हाँ, नहीं लगता, पर हाय ठीक आपका फादर की तरह तो नहीं लगता, पर हाय।
2: हाँ, लेकिन लेकिन मेरे पिताजी तो पागल थे ना, वो तो पागल थे। हाँ,
1: मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मेरे बेटे को पकड़ो, उन्होंने बंद किया मुझे।
0: अब आप घर जाइए, समझा? हाँ। बारिश भी थम गया है ना। हाँ। और कल सुबह थाने में पहुंच जाइएगा। हाँ
2: जी। खुश बाबू, आप ऐसा करिए। हाँ। आप जाइए।
0: हाँ।
2: मैं थोड़ी देर यही पिताजी के पास बैठूंगा।
0: ओरे बाबा, यहाँ बैठेगा? ठीक
2: हाँ।
0: है ठीक है, तो तुम बैठो, हम फिर जाता है। हाँ, हम जाता है।
2: पिताजी, ये आपने क्या कर डाला, क्या कर डाला आपने पिताजी।

0: पिताजी, पिताजी, ये आपने क्या कर डाला?
1: क्यों, क्या हुआ?
0: इतनी मुश्किल से प्रॉपर्टी डीलर ने दो लोगों को राजी किया था, वो आए और आपने उनसे बात तक नहीं की।
2: मुझे नहीं बेचना है अपना मकान। जानते हो कितनी यादें जुड़ी हैं इस घर से।
0: 40,000 में खरीदे इस टूटे फूटे मकान के 15 लाख रुपए देने को तैयार हैं होटल वाले।
2: 50 लाख भी अगर दें तब भी नहीं बेचूंगा। और फिर इस उम्र में 15 लाख लेकर करूंगा क्या मैं?
0: पिताजी, मेरा नहीं तो कम से कम अपने पोतों का तो ख्याल कीजिए आप।
2: उनका ख्याल तुम करो जीवन, वो तुम्हारे बेटे हैं।
0: पिताजी, आप कुछ समझिए तो सही।
2: क्या समझूं, क्या समझूं मैं?
0: 15 लाख में इस मकान को बेचकर किराए का मकान ले लीजिए, कुछ पैसा बैंक में डाल दीजिए और
2: क्या?
0: और फिर पिताजी, मुझे भी तो नए सिरे से अपना बिजनेस जमाना है, कुछ पैसा मुझे भी दे दीजिएगा, भले ही उधार दे दीजिए।
2: अपने रिटायरमेंट के पैसे से 30,000 मैंने दिए हैं तुम दोनों भाइयों को।
0: 30,000? अरे 30,000 में तो पिताजी बाहर एक छींका भी नहीं आता है।
2: होश में रह के बात करो जीवन।
0: होश में तो पिताजी आप नहीं हैं। मैं चाहूं तो कानूनन अपना हिस्सा ले सकता हूं आपसे।
2: क्या? तो फिर कान खोल कर सुन लो जीवन, मैं ये मकान नहीं बेचूंगा। और यही कह देना छोटे से भी, ज्यादा बहस की तो सारा मकान किसी संस्था को दान कर दूंगा।
0: अरे अरे अरे अरे, आप तो काफी लंबी सोच के बैठे हैं पिताजी। मैं भी देखता हूं आपके सपने कैसे पूरे होते हैं।
2: क्या मतलब, क्या चाहते हो तुम?
0: आग लगाना चाहता हूं इस घर को। यही चाहते ना, तो लीजिए, ये रही माचिस।
2: जीवन, पागल हो गया तुम?
0: हाँ हाँ,
2: बिल्कुल पागल
0: हो गया हूं मैं। पागल, मकान बेचकर दो मुझे पैसे, वरना रोक कर तुम अभी इस कबाब खाने को। मैं
2: बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत, छोड़, छोड़ माचिस को।
0: नहीं,
2: मैं कहता हूँ माचिस मुझे
0: नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा इस घर को। जो चीज मेरी नहीं है वो फिर किसी की भी नहीं हो सकती।
2: नीच बेहुदे बाप से हाथापाई करता है, छोड़ माचिस मैं कहता हूँ।
0: पकड़ो, लो पकड़ो ये माचिस, काम आएगी तुम्हारे कभी।
2: हे भगवान, इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था मैंने तुम दोनों को।
0: अरे इस बात की क्यों धौस मारते हैं आप? कौन बाप नहीं पढ़ाता लिखाता?

0: जाएगा।
1: लेकिन अवधेश, पागल खाने में तो काफी तकलीफ रहेगी उन्हें।
2: और क्या?
0: अरे हर महीने कुछ पैसे मुझे दे दिया करना, मैं उन्हें दे आया करूँगा, कोई कष्ट नहीं होने पाएगा उन्हें।
1: लेकिन मकान तो फिर भी पिताजी के ही नाम रहेगा ना।
2: और क्या,
0: एक दो कागजों में उनका अंगूठा लगवा लेंगे, नहीं काम बना तो दो तीन जाली कागज मैं बनवा दूंगा।
1: मगर नवजोत वाले उन्हें पागल कैसे मानेंगे?
0: तुम दोनों यार आते तो बेवकूफों की श्रेणी में ही हो। मैं तुम लोगों को एक बात पहले से साफ कर दूं कि ये फार्मूला अंधेरे में चलाएगा तीर जैसा है, और ये तीर निशाने पर लगेगा या नहीं इसकी 50-50% उम्मीद ही रखो। हाँ, वैसे तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नवजोत में तमाम लोग छुटकारा पाने के लिए अपने पिता से लेकर दूसरी शादी के चक्कर में अपनी पत्नी तक को भर्ती करवा चुके हैं।
1: मगर अवधेश, इसकी जांच भी तो कभी हो सकती है।
0: एक अच्छा भला आदमी साल भर इस कैद खाने में रह ले तो पागल तो हो ही जाएगा। अब वैसे तुम लोग चाहो तो अपने पिता के मरने का इंतजार कर लो, 20 साल 25 साल या।
3: अरे नहीं नहीं भाई, अब तो लगता है 20-25 साल तक भीख मांग करके ही गुजारा करना ही पड़ेगा।
1: मेरे ख्याल से अवधेश की बात ठीक ही है भैया, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना तो पड़ेगा ना।
0: अब पिताजी जैसी पुरानी चीज खोकर अफसोस ही क्या होगा।
3: क्या कर डाला आपने, क्या किया पिताजी?
4: अरे झूललाल बाबू, अभी गया नहीं आप? यहीं बैठा है।
3: जाता हूँ डॉक्टर साहब, जाता हूँ।
5: बड़ी देर कर दी आपने आने में, संपत भैया 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं आपका।
3: संपत,
1: नमस्ते भैया।
3: नमस्ते नमस्ते, बड़े कमजोर नजर आ रहे हो।
1: अब हम बूढ़े हो गए भैया, फिर पास ऐसा है ही क्या जो खुश रखे, स्वस्थ रखे?
3: पिताजी के बारे में पता चला तुम्हें?
1: पता चला, ये तो होना ही था। एक दिन
3: एक नई मुसीबत भी तो खड़ी हो गई
1: जी।
3: पुलिस सारी बातों की जांच करेगी, तुमको तो पता ही है, उनको पागल सिद्ध करने वाले कागज भी तो जाली ही थे। अवधेश ने जिससे बनवाए थे वो डॉक्टर ही कहां था, शायद कोई कंपाउंडर वगैरह था।
1: यानी एक और मुसीबत?
3: हाँ, एक और मतलब?
1: अब आपसे क्या छुपाना भैया, मेरे लड़कों ने मुझे घर से जाने के लिए कह दिया।
3: अरे अरे, लेकिन संपत, ये सब कैसे हुआ, कब हुआ?
1: क्या बताऊं, मैं आपसे सब छुपाए रहा भैया। मैंने अपने लड़कों पर भरोसा करके उन्हें सारा पैसा दे दिया, दुकान उनके नाम कर दिया, और पैसा पाते उनकी आंखें पलट गईं। रोज ही रोज मेरा अपमान होता है, घर से जाने के लिए कहा जाता है, जी तो करता है आत्महत्या कर लूं।
3: लेकिन पिताजी वाला मकान बेचने पर तो 7.5 लाख रुपए मिले थे तुम्हें।
1: मिले थे भैया, ज्यादा पैसा होने पर खर्च भी कुछ ज्यादा होता है, फिर पैसा पिताजी की मेहनत का था, हमारी मेहनत का नहीं था, जो ज्यादा खर्च होने पर दर्द होता।
3: सच कहते हो संपत, वो रुपए तो ऐसा लगा मानो सड़क पर पड़े मिले हो। पिताजी की बात और थी, हर काम करने से पहले 20 बार सोचते थे। अब लगता है मकान न बेचने का उनका फैसला भी ठीक ही था। अब देखो, किराए के मकान में आए दिन मकान मालिक किराया बढ़ाता रहता है, न बढ़ाओ तो निकालने की धमकी ऊपर से।
1: अच्छा भैया, पुलिस जांच से अगर सारी बातों का

0: खुलासा हो गया तो?
1: अरे नहीं नहीं, तब तो बुढ़ापा ही खराब होगा और जग हंसाई ऊपर से होगी।
0: खैर जो भी हो, मेरे से तो बेहतर स्थिति है आपकी।
1: हाँ ठीक कहते हो, फिलहाल तो बेहतर ही है। लड़की की शादी कर दी, लड़का है बस जरा चुप रहता है, घर आएगा आते ही अपने कमरे में घुस जाएगा, न किसी से बोलना न किसी से चालना।
0: अच्छा भैया चलता हूँ, वो फिर आऊंगा।
1: अच्छा,
0: वो भैया वो
1: हाँ?
0: वो
1: कुछ कहना चाहते हो?
0: भैया पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए मेरा मेरा मतलब है कि
1: अरे
0: वो...
1: नहीं नहीं चिंता मत करो, पैसे का इंतजाम कर दूंगा। और कुछ?
0: वो कहते तो ठीक नहीं लगता भैया। वैसे वैसे अगर मेरे लड़कों ने मुझे निकाल दिया तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ
2: सुनो
0: आकर...
2: जी, बात सुनो जरा।
1: हाँ, ठीक है भाई, संपत्ति तुम्हारे रहने पर तो हमें कोई एतराज नहीं है, पर तुम तो जानते हो एक ही कमरा फालतू है और मेहमान है कि आते ही रहते हैं। अब अपनी सुविधा के लिए तुम मुझे तो तकलीफ में डालना पसंद नहीं करोगे ना?
0: क्या कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा चलता हूँ। नमस्ते
1: अच्छा
0: भैया।
1: अच्छा नमस्ते।
0: नमस्ते भाभी।
1: मुसीबत पर मुसीबत, अपने बच्चों से बनाकर रखेगा नहीं और यहाँ टिकने के लिए हाथ फैलाए हैं। एक तो पिताजी ने आत्महत्या करके और मुसीबत खड़ी कर दी, अगर जांच हुई तो बचना भी मुश्किल हो जाएगा।
2: अरे क्या अशुभ बोल रहे हो?
1: अरे ठीक ही कह रहा हूँ। ये छड़ी किसकी रखी है?
2: अवधेश की होगी, भूल गया होगा।
1: अवधेश? अवधेश कब आया था यहाँ?
2: कल जब आप काम पर गए थे। वो तो आता ही तब है जब आप घर पर ना हो।
1: अरे लेकिन लेकिन वो आता क्यों है यहाँ?
2: क्या पता, अपने बेटे अनिल से पूछिए ना। उसी से मिलता है, शायद कोई बिजनेस करना चाहता है अनिल।
1: बिजनेस? बिजनेस क्या मतलब? बिजनेस और अवधेश के साथ? अरे पता है, सांप है वो, सांप सब कुछ बेचकर खा जाएगा।
2: क्यों, आपकी तो बहुत दोस्ती थी उससे, खाना पीना उठना बैठना।
1: अरे हाँ हाँ, जब थी तब थी। इसी बेवकूफ की बातों में आकर ही मैंने न जाने कितनी गलतियां कितने पाप कर डाले। जवानी के जोश में पता ही नहीं तक चला कि मैं पिताजी के साथ क्या सुलूक कर रहा हूं। उस समय तो बस इसी अवधेश और संपत ने मिलकर पिताजी के खिलाफ भड़की आग में घी डाला था।
2: उन्होंने भड़काया और आप भड़क गए।
1: अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम भी मुझे ही दोष दे लो। नोच खाओ, मुझे नोच खाओ। समय पिताजी को पागल खाने भेजने से तुम भी तो मना कर सकती थी मुझे।
2: हाँ हाँ जरूर, उस समय लाखों रुपए के आगे कुछ सूझ रहा था आपको? उस समय तो खाने में जाने किस किस चीज का चूरन मिलाकर खिलवाते थे आप।
1: क्या बोली क्या बोली क्या बोली? बोलो बोलो, जोर से बोलो, चीखो चीखो ताकि मोहल्ले वाले भी तो सुन ले।
3: अरे बाबूजी क्या हुआ, क्यों इस तरह से चिल्ला रहे हैं आप?
1: ये एक बात बताओ अनिल, ये अवधेश क्यों आता है यहाँ? हाँ क्या करना चाहते हो तुम उसके साथ? बिजनेस? बिजनेस करना चाहते हो? पता है बेचकर खा जाएगा तुम्हें और तुम्हारे कपड़े भी।
3: मगर वो तो आपके दोस्त हैं।
1: कोई दोस्त वोस्त नहीं है, कोई दोस्त वोस्त नहीं है मेरा, समझे?
3: मगर क्या बिगाड़ा अवधेश चाचा ने?
1: उसकी वजह से ही तुम्हारे बाबा ने आत्महत्या कर ली।
3: बाबा ने? वो जो पागलखाने में बंद थे?
1: हाँ हाँ वही।
3: बाबा ने आत्महत्या की?
1: क्या क्या बिजनेस समझा रहा था तुम्हें? क्या बिजनेस समझा रहा था वो तुम्हें?
2: बेटे तुम्हारे बाबा ने अवधेश की वजह से नहीं, इनकी वजह से आत्महत्या की है। इन्होंने
1: चुप कर, मैं कहता हूँ चुप कर।
3: पिताजी क्या हो गया है आपको, माँ पर क्यों बिगड़ रहे हैं? बिजनेस में बुराई ही क्या है, आखिर मुझे अपने भविष्य के बारे में भी सोचना है। महज 3 लाख से मेरा बिजनेस शुरू हो जाए।
1: अच्छा अच्छा, और ये 3 लाख रुपए तुझे देगा कौन?
3: अवधेश चाचा ने कहा है कि रुपया आपके पास है, आखिर आपने भी तो बाबा से पैसा लिया होगा।
1: मैंने क्या मतलब? और क्या बताया अवधेश ने तुझे? और क्या क्या बताया तुझे?

0: खोल कर सुन लो, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुम्हें, समझे? एक कौड़ी भी नहीं दूंगा।
1: समझिए आप, आप अगर मुझे पैसे नहीं देंगे तो कानूनन अपना हक ले लूंगा मैं आपसे।
0: क्या कहा तुमने? कानूनन अपना हक लोगे? तो जाओ सड़क पर और मांगो कानून से अपना हक।
1: नहीं जाऊंगा, देखता हूं कौन निकालता है मुझे यहां से।
0: और ये हाथ में क्या है तुम्हारे?
1: हाथ में आपसे क्या मतलब? आप तो घर से निकाल रहे थे मुझे, वैसे ये आप ही के खाने के लिए लाया हूं मैं।
0: खाने के लिए? मेरे खाने के लिए? हो तो ये हो रहा है इस घर में, ये हो रहा है। अरे खुले आम क्यों नहीं खिला देते जहर? अरे गला घोट कर क्यों नहीं मार देते मुझे? खिलाओ खिलाओ खिलाओ जहर मुझे, खिलाओ।
1: ये खिलाओ। क्या अनशन बक रहे हैं आप? कौन क्या खिला रहा है आपको?
0: अरे मैं सब समझ गया हूँ तुम लोगों की चाल, मैं सब समझ गया हूँ। कौन खोल कर सुन लो, आज से अपने लिए खाना मैं खुद बनाऊंगा और तुम माँ बेटे को निकाल करके ही दम लूंगा। अब देश के साथ मिलकर मेरी दौलत हड़पना चाहते हो, मुझे पागल खाने में भर्ती कराना चाहते हो? अरे अरे कमबख्तो, शहर खिलाकर आधा तो मार ही दिया है मुझे।
2: ये क्या कह रहे हैं आप?
3: अरे भाई क्या हो रहा है?
1: देखिए ना चाचा, इनका तो लगता है दिमाग चल गया है, पागल हो गए हैं लगता।
0: अरे मैं पागल? अरे मैं नहीं हूँ पागल, तुम सब हो पागल, नहीं हूँ मैं पागल। तुम अगर मुझे पागल खाने भेजोगे तो नहीं जाऊंगा, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा वहाँ।
3: हाँ आपकी बात भी सही हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन सच तो बताएगा डॉक्टर ही। क्यों अनिल भतीजे?
0: क्या कहा? डॉक्टर? नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा।

जैसी करनी वैसी भरनी। अभी आपने रोमी शिराज का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे मुद्रा राक्षस और ये नाटक आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति थी। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: कैमरा एक्शन।
1: आज के बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता आलोक गागड़ेकर से यूनुस खान की बातचीत।
2: बहुत बहुत स्वागत आलोक गागड़ेकर जी विविध भारती के स्टूडियो में।
3: जी जी जी नमस्कार, धन्यवाद।
2: आलोक जी, रेडियो से जो आपका जुड़ाव है वो जब हमारी स्टूडियो में आते आते बातचीत हो रही थी तो बहुत सारी बातें सामने आई, तो मुझे रेडियो से जुड़ी कुछ दिलचस्प घटनाएं बताइए जो आपके जीवन में घटित हुई हैं।
3: जी, यानी ये कह सकता हूं मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है बचपन से।
2: जी,
3: क्योंकि घर में तो टीवी भी था, कलरमैन टीवी था हमारे पास और सभी संसाधन थे, लेकिन मेरी नानी माँ का घर था जहाँ बिजली भी नहीं थी और वहाँ एक लकड़ी का रेडियो था।
2: वो किस जगह रहती थी?
3: वो हमारे अहमदाबाद में ही, अहमदाबाद हमारा जो एक मोहल्ला है, जो हमारा गांव है छारा नगर गांव, तो वहां पर रहते थे। तो सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता था और वही हमारा मॉर्निंग एक उठने का प्रण बनता था कि रेडियो शुरू हो गया इसका मतलब सुबह हो गई है, अब रेडियो पे ये गाने चल रहे हैं इसका मतलब दोपहर हो गई है। तो यानी कि जो रेडियो में भी बार बार कहा जाता है कि रेडियो विविध भारती जीवन का संगीत, तो सच में वो जीवन का संगीत बचपन से ही जुड़ा था। तो मैं बच्चा था यानी 11-12 साल का और मुझे क्या समझ है गीतों की, लेकिन बावजूद उसके मुझे वो बीच बीच में आती हुई एंकरिंग, बीच बीच में आते हुए एड फिल्म्स के जो जिंगल्स और इन सबके साथ इतना जुड़ाव हो गया कि एक वक्त

0: ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
1: ओहो
0: मुझे लगा कि मैं नहीं, अभी के अभी रेडियो रिपेयर करो। और हमारे नानी माँ का आर्थिक परिस्थिति इतना अच्छा नहीं था कि वो तुरंत एक

0: रेडियो से वो जुड़ाव था कि जैसे एक मित्र आपका साथ छोड़ दे तो कैसा फील होता है।
1: कितनी
0: तो
1: प्यारी बात है कि आप इतना ज्यादा जुड़े थे, तो फिर वो रेडियो सुधर पाया कि नहीं सुधर पाया?
0: वो रेडियो तो नहीं सुधर पाया, लेकिन इतना है कि नानी माँ और ये लोग इतना प्यार करते थे मुझसे कि उन्होंने फिर मुझे एक नया ट्रांजिस्टर रेडियो, जो उस वक्त मुझे अभी भी कीमत याद है कि 92 रुपीज में हमने खरीदा था, जो मेरे पास ही रहता था। और तब फिर धीरे धीरे समझ बनी, हम स्पोर्ट्स खेलते थे तो क्रिकेट रेडियो के अंदर क्रिकेट सुनना, यानी कि वो स्टेडियम में जो आनंद आता है उससे भी ज्यादा आनंद आपको रेडियो पे सुनने का आता है, क्योंकि एक एक बॉल, एक एक बैट, एक एक खिलाड़ी की हरकत जो हमको बयां करते थे रेडियो पर, वो पूरा विजुअलाइजेशन जब सामने आया तो पता चला कि ये केवल मशीन का पुर्जा नहीं है, लेकिन ये तो एक ऐसा यंत्र है जो शायद मनुष्य के साथ बातें कर रहा है, यानी कि एक हमारा गिव एंड टेक होता था। ये फिर आगे चल की बातें है, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी जुड़ा तो वहां पर भी रेडियो सुनते थे हम, क्योंकि एक FM मिल ही जाता था कहीं पे भी, है ना। तो वहां पर भी ऐसे लगता था कि आज मैं दुखी हूं ये रेडियो को कैसे पता चल गया,
1: अरे वाह वाह वाह,
0: आज मेरी मेरे मित्र के साथ अनबन हुई ये रेडियो को कैसे पता चल गया, और उन्होंने आज वही गीत क्यों चला दिया कि दोस्त दोस्त ना रहा या प्यार प्यार ना रहा या इस तरीके की। तो जिंदगी के साथ आपको साहित्य, संगीत और अभिनय या मनोरंजन, इन सबको जोड़ने वाला अगर कोई यंत्र है इस सृष्टि पे तो वो रेडियो है। और पूरी पृथ्वी में मुझे लगता है कि हमारा देश का, भारत देश का जो विविध भारती और आकाशवाणी रेडियो है, ये विशिष्ट प्रकार का रेडियो है। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि मैं आज इस मंच पर बैठा हूं और आपके सामने प्रस्तुत हूं, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, यानी मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है।
1: क्या बात है, तो ये आपका रेडियो से इतना ज्यादा जुड़ाव रहा, विविध भारती से इतना जुड़ाव रहा। बचपन में अभिनय की ओर रुझान कब हुआ था आपका?
0: अभिनय का ऐसा था कि स्कूल के दिनों में जब टीचर्स डे सेलिब्रेट होता था तो उसमें मुझे एक बार टीचर ने कहा कि आपको टीचर बनना है, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि क्या एटीट्यूड है, कितना डेवलपमेंट आया है। तो मेरे लिए यही था कि कौन सा विषय, तो सबसे सुंदर मजबूत टिकाऊ विषय था मेरे लिए हिंदी, कि इससे अच्छा विषय क्या हो सकता है। तो मैंने हिंदी विषय के लिए पार्ट लिया कि मैं हिंदी विषय पढ़ाऊंगा, और मुझे अभी तक शायद याद है कि मैं मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी को लेकर बात करने वाला था जो हमारे कक्षा में थी। तो वहां टीचर्स डे में टीचर बनने का जो एक पहला अनुभव रहा, वो मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार, यह तो अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर नुक्कड़ नाटक, जो हमारा एक अहम हिस्सा है थिएटर का, तो गुजरात में हम थोड़ा अवेयरनेस को लेकर नुक्कड़ नाटक करते थे
1: जी,
0: कुछ गरीबों को समझाने के लिए, मजदूरों के लिए।
1: तो ये किसी समूह से जुड़ गए थे आप?
0: हाँ, हमारा एक थिएटर ग्रुप था जिसका नाम ही था बुधन थिएटर ग्रुप। तो बुधन एक विशिष्ट व्यक्ति था, तो उस बुधन के किरदार से हम बुधन जैसे और किरदारों के लिए कोई एक मैसेज तैयार करते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। तो नुक्कड़ नाटक से शुरुआत हुई और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक मेरी, यानी कि ये जर्नी चली, कि जिसमें मैं सिर्फ सीख रहा था, क्योंकि अभिनय को जितना सीखो उतना कम है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज भी हम बड़े बड़े एक्टर्स को जब मिलते हैं तो वो भी कुछ न कुछ नया मनन चिंतन कर रहे होते हैं, कि भाई आज आपको क्या जरूरत है अभिनय के बारे में इतना सोचने की, आप जो कुछ बोलोगे वो ही पत्थर की लकीर बन जाएगा। लेकिन बावजूद उसके हमने देखा कि कितना सिंसियर वर्क है ये, कि नजर हटी की दुर्घटना घटी, एक अभिनय यानी कि 2-2.25 घंटे की फिल्म में जब आदमी एक्टिंग करता है तो उसको कितनी बारीकाई से काम करना पड़ता है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के बाद और बारीकाई से मैंने इस पर काम किया, ध्यान दिया, और फिर लगा कि अब जिंदगी अभिनय के सहारे गुजर सकती है जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, क्योंकि अपने आप में 11-15 हजार लोगों का एप्लीकेशन वहां उस वक्त गया था।
1: हमें यही सोच रहा था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना इतना आसान नहीं रह गया है, तो आप किस बरस गए थे और कितना कड़ा मुकाबला था?
0: कड़ा मुकाबला तो बेशक था, और मैं 2003 में मैंने अप्लाई किया था, उससे पहले मैंने 2002 में अप्लाई किया और मैं फेल हुआ। तो ये भी एक जिंदगी का सबक है।
1: तो बहुत दुखी हुए होंगे?
0: बहुत दुखी हो गया था, मुझे ऐसे लगा था कि पता नहीं मैं जिंदगी में अभी कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक डॉक्टर देवेंद्र राज अंकुर जी, जिन्होंने बहुत समझाया था कि ऐसा नहीं होता है, आप थिएटर करते रहो, जुड़ते रहो। जब अगर आप एनएसडी में नहीं हुआ सिलेक्शन तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी खत्म हो गई, आप कहीं और जगह भी। लेकिन बावजूद उसके मेरा मन नहीं मान रहा था, मैं बोला नहीं सर।

0: मैं एक ऐसी जगह पर प्रशिक्षण लेना चाह रहा था कि जहां पर रात दिन आप सिर्फ अभिनय की बातें करते हैं, संगीत की बातें करते हैं, साहित्य की बातें करते हैं। तो फिर मन बनाया कि अगले साल दोबारा मेहनत करनी है, और अगले साल और ज्यादा मेहनत करके मैं वहां पहुंचा और मेरा फिर सिलेक्शन हो गया 2003 और 2006। ये 3 वर्ष मेरे, यानी कि मिला जुला कर 1000 दिन की ट्रेनिंग मैंने वहां पर ली है।
1: क्या बात, क्या बात है। यहां रुकते हैं और एक गाना सुनते हैं। आपकी पसंद का कौन सा गाना यहां बजाया जाए?
0: मुझे लग रहा है कि मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है जो दोस्ताना फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब और शत्रुघ्न सिन्हा साहब पर फिल्माया है,
1: बिल्कुल,
0: और वो है सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो उसमें ना एक जगह पर वो एक सैड नोट भी है कि जहां पर किशोर कुमार और रफी साहब का दोनों का एक सैड नोट भी है, तो मुझे वो भी बड़ा पसंद है। लेकिन अगर वो एक फुल फेज में अगर वो गाना सुना दिया जाए तो बड़ा मजा आ जाए।
1: ये गाना सुनते हैं।
0: जी जी।

0: आलोक जी, दोस्ताना फिल्म का ये गाना हमने सुना, और इससे पहले बातें ये हो रही थी कि आपने पहले स्ट्रीट थिएटर से शुरू किया अहमदाबाद में, और वहां से आपने ये तय किया कि भाई अब मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना है। आपने ये भी जिक्र किया कि परिवार में जो है वो वकालत की परंपरा थी, पिताजी वकील थे।
1: जी जी जी जी।
0: तो ये कितना आसान था अभिनय की दुनिया में जाना एक वकील का बेटा होकर?
1: जी, पापा का तो यही था कि मैं वकील ही बनूं, क्योंकि होता है ना कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील। लेकिन पापा ने ये भी एक उनमें गुण थे कि जब वो कॉलेज काल में पढ़ते थे तो उन्होंने भी काफी नाटक किए थे।
0: ओके।
1: तो उन्होंने वो नाटक किए थे, शेक्सपियर के प्ले किए थे उन्होंने, सेंट जेवियर्स कॉलेज में वो पढ़ते थे, जेवियर्स में अहमदाबाद में। तो उन्होंने फिर बादल सरकार का एक स्पार्टकस नाटक भी खेला था।
0: अरे बाप रे।
1: तो फिर जब उनसे मैं परमिशन मांगता था कि मैं मोहल्ले के नाटक में भाग लेने जा रहा हूँ गणपति के लिए या जन्माष्टमी के लिए, तो वो बेझिझक मुझे कहते थे जाओ बेटा, उससे जिंदगी समझ में आएगी तुमको कि थिएटर एक रंगमंच है। लेकिन जब उनको ये कहा गया कि अब मैं पूरी तरीके से ही नाटक में हूं, तो उन्होंने कहा कि 100% करो, लेकिन प्रशिक्षण के साथ करो। उन्होंने ये कहा कि हर चीज को सीखा जा सकता है। और यही बात फिर एनएसडी में मुझे अंकुर जी ने कही कि आप गौर कीजिए कि आपको कोई सलून में आप गए हुए हो और आपको पता चले कि जो आपके अभी बाल बनाने वाला है या कटिंग करने वाला है आपके बालों की, वो कहीं से सीखा हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं तो उनको अपना सिर नहीं दूंगा। तो बोले कि आप कैसे सोच सकते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे का

0: नाटक, और आप बिना ट्रेनिंग के उतनी ही गुणवत्ता के साथ कर लोगे। तो पिताजी ने फिर मुझे परमिशन दी कि यू कैन गो, और फिर कॉलेज में मैंने कैंपस थिएटर किया। मेरे गुरु सौम्य जोशी जी, जो फिल्मों में अभी लिखते हैं, उनकी फिल्म 102 नॉट आउट उन्होंने लिखी। उसके अलावा बहुत अच्छा थिएटर करते हैं वो गुजराती।
1: लगातार उनका तो बहुत अच्छा,
0: हाँ
1: अच्छे प्लेज अभी भी चले आ रहे हैं।
0: हाँ अभिजीत जोशी एंड सौम्य जोशी दोनों
1: जी
0: भाई है।
1: जी
0: तो इन दोनों भाइयों के साथ मैंने थिएटर की जर्नी शुरू की थी अहमदाबाद में। तो पिताजी को लग रहा था कि ये, जैसे वकालत भी एक अपने आप में रिस्की फील्ड है, कि आपका काम हुआ तो ठीक है, वरना कचहरी के चक्कर लगाते रहिए। तो पिताजी ने फिर हमको कहा कि आप कर सकते हो। तो फिर मैंने कॉलेज में दबा के थिएटर किया।
1: वाह वाह,
0: 3 वर्ष मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला।
1: क्या बात है।
0: INT एक संस्था है जिसको इंडियन नेशनल थिएटर बोलते हैं, जो मुंबई बेस्ड है, लेकिन वो गुजरात में कंपटीशन करती थी कॉलेज में। तो ये कह सकते हैं कि 20वीं सदी का आखिरी अवार्ड मुझे मिला है और 21वीं सदी का प्रथम अवार्ड भी मुझे मिला है।
1: वाह वाह।
0: तो 99 में मैंने पहला प्ले किया था तुत्तु तु तु तु तारा, एक शराबी का कैरेक्टर था, जो जॉनी लीवर साहब के एक जोक पर हमने नाटक इम्प्रोवाइज किया था कि अहमदाबाद में चारों तरफ एक शराबी घूम रहा है बस। तो उस किरदार को मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिर दूसरे दिन मैंने एक किसान की बायोपिक की थी, फार्मर सुसाइड्स बहुत हो रहे थे गुजरात में। तो सौम्य जोशी साहब की कलम थोड़ी
1: मजबूत
0: वैसे, हाँ,
1: है
0: इंकलाबी कलम रही
1: तो ये
0: शुरुआत
1: सब
0: से।
1: उन्होंने लिखे।
0: उन्होंने ही लिखे दोस्त चौक्का सही नगर वस्तु तू,
1: ओ
0: और
1: हो
0: बहुत कमाल के लिरिसिस्ट है वो, कमाल के म्यूजिक कंपोजर है, कमाल के एक्टर, कमाल के डायरेक्टर। और मेरा सौभाग्य है कि मैं तो, मेरा पूरा परिवार उनका ऋणी रहेगा कि मुझे ऐसे माहौल से उन्होंने निकाला जहां थोड़ा मुश्किल था ग्रो करना, तो वहां से उन्होंने मुझे एक ग्रोइंग एक्टर एक बनाया। तो ये आज इस मंच पर उनको याद कर रहा हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे गुरु को याद।
1: एनएसडी में पहुंचने के बाद आपका एक तरह से सपना पूरा हुआ, और आपने कहा कि 1000 दिन वहां तकरीबन आपने निकाले हैं। तो एनएसडी की कुछ यादें हैं, और वहां जो आपके बैचमेट्स थे, आपके सीनियर्स थे, उन सब के बारे में बताइए।
0: जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा यह है कि आप वहां जाते हो ना, तो आपके साथ प्रांगण में, उसके कैंपस में पूरा देश आपके साथ रहता है। तो सबसे पहला मजा तो वो आया कि जब सीनियर जूनियर के बीच में एक इंट्रो फेस होता था हमारा, जस्ट एक इंट्रो फेस होता था कि लोग पूछते थे आपके बारे में, तो बड़ा अच्छा था कि पहले ही हमारा इंटरेक्शन ऐसे होता था कि आप गुजराती हो और आपका एक बैचमेट आसामी है, असम से है, तो आपको असामी भाषा सीखनी है और आपको उन्हें गुजराती सिखानी है।
1: अरे गजब।
0: तो ये कल्चरल एक्सचेंज के प्रोग्राम से जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी हमारी आज तक बनी हुई है कि अब हम लाइक कोई किरदार में एक्सेंट डालना हो तो हम बड़ी आसानी से बंगाली एक्सेंट ले लेते हैं, एमपी का एक्सेंट ले लेते हैं। और किस्से तो इतने हैं, जैसे कि हमारे सीनियर पंकज त्रिपाठी जी थे, तो
1: ओहो
0: वो थर्ड ईयर में थे और हम फर्स्ट ईयर में थे। तो जब बातचीत होती थी विद्यार्थियों के बीच में, तो हमको वो कहते थे कि अच्छा तुम गुजरात से हो, तो गुजरात का फोक थिएटर के बारे में तुम्हारा क्या समझ है? तो हमने कहा कि हाँ, भवाई और ऐसा फोक थिएटर है, और उनका बिहार का एक अलग फोक थिएटर है, लौंडा नाच और इन सारी चीजों का। तो उस जगह से लाइक एक होता है ना कि आप टीचर से जितना सीखते हो उतना आपके सीनियर्स भी आपको इतने प्यार से सिखाते थे। इश्तियाक भाई थे तो उनका म्यूजिक पर कमांड था,
1: अरे हारमोनियम पे बैठ जाएं वो तो
0: हारमोनियम पर
1: फिर।
0: बैठ जाएंगे तो वो चलता ही रहेगा उनका। तो हर तरह से, यानी कि सुबह से लेकर रात तक हमारा पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती थी। एक मजेदार किस्सा है वो ये है कि हम लोग गए थे KN पणिकर जी के थिएटर में केरला, तो वहां पर हमको तैया तैयम नाम का एक नाटक करने को कहा गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म था। ये तैया तैयम एक रिचुअलिस्टिक थिएटर केरला
1: बिल्कुल
0: का होता है कि जिसकी यात्रा करीबन 9-10 दिन तक चलती है, यानी
1: जी
0: 12-15 दिन तक एक ही शो चल रहा है।
1: जी
0: रोज रात को आ रहे हैं लोग, शो चल रहा है 2-3 घंटे, फिर प्रसाद बट रहा है, फिर दूसरे दिन आ रहे हैं। तो हमको वहां पर, वहां की जो गवर्नमेंट के साथ टाई अप होकर, और हम वहां पर गए, तो पणिकर जी की एक बात जो मुझे इतनी अच्छी लगी, जो सीखने को मिली, कि वो व्यक्ति ने हमको विलंबित विधा में, यानी कि विलंबित लय में आप संस्कृत नाटक की जो एक लय होती है, जिसमें फिर हमको

0: पता चला कि मोहनलाल जी भी उनके वहां प्ले कर चुके थे। तो वो विलंबित लय में आप म्यूजिक के साथ, बीट के साथ एक सेंटर स्टेज पर आते हो और वहां लार्जर देन लाइफ आपको एक्ट करना पड़ता है, तो दैट्स गुड। यानी एनएसडी की तो बात ही अलग है। तो
1: बिल्कुल।
0: हमारे
1: और
0: सीनियर कई रतन थियाम जी का थिएटर करने गए थे वहां पर,
1: अच्छा,
0: वहां थांगटा सीख कर आए। हम
1: हाँ
0: केरला गए तो हम वहां कल्लरीपयट्टम सीख कर आए। तो आज भी
1: हाँ
0: वो कल्लरीपयट्टम की आर्ट मुझे आज भी याद है और आज भी मैं उसी से व्यायाम करता हूं अपना।
1: अरे वाह वाह वाह। तो एक तरह से ये होता है कि एक तो आप भारत से परिचित होते हैं, परंपराओं से, संस्कृति से परिचित होते हैं, और दूसरा नाट्य परंपराओं से अच्छी तरह से परिचित होके एक ठोस एक्टर या एक ठोस कलाकार बना के एनएसडी आपको
0: भेजती है।
1: मैदान में भेजता है कि अब जाओ। आपके साथ भी ये हुआ कि तय करना था कि दिल्ली में रहना है कि मुंबई जाना है?
0: नहीं, मेरा तो पहले से ये था कि मुझे मुंबई ही जाना है, क्योंकि मैं अगर गुजरात में भी जाता तो गुजराती थिएटर अपने आप में एक कमर्शियल थिएटर है, कि जहां से आदमी आज भी सिर्फ गुजराती थिएटर करने वाले, परेश रावल जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि आज अगर पूरे भारत देश में रोज थिएटर हो रहा हो तो वो सिर्फ गुजराती है।
1: वाह, सही बात
0: रोज
1: है।
0: रोज, यानी कि आज आप बोरीवली का प्रबोधन ठाकरे या घाटकोपर का ऑडिटोरियम या भाईदास, अब लेकिन तेजपाल हॉल या वहां पर कहीं पे भी चले जाओ कि रोज आपको एक नया नाटक देखने को मिल सकता है। तो मुझे तो पता था कि मुझे थिएटर करना है या सिनेमा करना है, तो मेरे लिए पृष्ठभूमि मुंबई से अच्छी कुछ नहीं हो सकती थी। तो दिल्ली में मेरा रुकने का प्लान नहीं था, यानी कि रंगमंडल से जुड़ने का और उसका मेरा कोई प्लान नहीं था। मेरा यही था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ट्रेनिंग ली है, अब जल्दी से इस कैंपस को मुझे छोड़ देना है, क्योंकि मैंने ऐसे कई हमारे सीनियर विद्यार्थियों को देखा कि फिर वो वहीं रहते थे तो, और हम रोज पूछते थे कि दादा आप कौन सी बैच के हो, तो कोई कह रहे थे कि हम 95 के बैच के हैं, 92 के बैच के हैं, और वहीं कैंपस में आकर और कैंपस के साथ ही जुड़ जाते हैं, तो आदमी आगे चल के ग्रो नहीं कर पाता। तो हमने सोचा कि हमें दिल्ली तो नहीं रहना है, हम मुंबई चले चलेंगे, और मुंबई और अहमदाबाद के बीच में डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा नहीं था, तो कॉन्फिडेंस मेरा बरकरार रहा, और मुंबई में आते ही सरस्वती माता की कृपा से काम भी अच्छा मिलने लगा।
1: यहां एक गाना सुनते हैं, फिर
0: जी
1: मुंबई की बातें
0: जी
1: करेंगे।
0: जी जी
1: तो बताइए कि आपकी पसंद का कौन सा गाना होगा यहां पर? हाँ
0: जी धर्मवीर फिल्म का गाना मेरा बहुत फेवरेट है, जो दोनों सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं
1: वाह,
0: अपनी जोड़ी, और वहां पर भी एक सैड नोट आता है
1: बिल्कुल अनिल।
0: माता को लेकर, कि ये जो सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है, तो रानी माँ से मुझको भी मिल जाए ममता थोड़ी।
1: वाह वाह वाह,
0: तो ये एक अगर आप सुना दे तो
1: जरूर सुनते हैं
0: बहुत
1: ये
0: अच्छा।
1: गाना।
2: सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी, सात अजूबे।

0: धर्मवीर फिल्म का ये गाना हमने सुना और बातें मुंबई की हो रही हैं। दिल्ली की दुनिया बहुत अलग है और मुंबई की दुनिया संघर्षों की दुनिया है। जब आप मुंबई आए तो क्या कैफियत थी और क्या परिस्थितियां थी?
1: बहुत वैसा सवाल है कि सच में आज भी वो लम्हा याद करता हूँ तो थोड़ा पेट में एक घबराहट सी हो जाती है कि मैं आया था तब मैं शादीशुदा था,
0: अच्छा,
1: यानी कि मेरी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फर्स्ट ईयर के बाद ही अरेंज मैरिज मेरा घर में गुजरात में शादी हो गई थी।
0: अच्छा ऐसा।
1: हाँ,
0: और
1: और
0: आपने ये तय किया कि भाई पढ़ाई के दौरान शादी कर
1: हाँ
0: लेते हैं?
1: हाँ क्योंकि हमारे वहाँ बहुत जल्दी हो ही जाती थी तो उससे कोई छुटकारा था नहीं, तो बहुत
0: तो एक काम करते हैं, संघर्ष के बारे में बाद में बात करते हैं, ये शादी वाली बात पूरी कर लेते हैं पहले।
1: जी, फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ रहा था उससे पहले ही हमारी शादी की बात तय हो गई थी। मेरी वाइफ जिसका नाम रुक्ष्मणी है और वो बीकॉम कर रही थी, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और मैं बीए कर रहा था, बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसका थिएटर से कोई ताल्लुकात नहीं था लेकिन अच्छे घर की संस्कारी लड़की थी तो घर वालों ने कहा कि शादी तो आज नहीं तो कल करनी है, तो हमने कहा कि नहीं हमको तो अभी दिल्ली जाना है, पता नहीं क्या। बोले नहीं तुम शादी दिल्ली में छुट्टियों में आकर शादी कर सकते हो और उसके बाद फिर आराम से तुम जिंदगी बसर कर सकते हो। तो मुझे भी ऐसे लगा कि चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जब इतने ही संघर्ष ले लिए है जिंदगी ने तो ये भी एक संघर्ष निपट जाएगा। तो फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में जब मैं घर आया 2004 में तब हमारी शादी हुई और अभी हमारी शादी को 22 साल कंप्लीट हो गए। और जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं पास आउट होने के बाद जब बंबई आए तो ये हालत थी कि अब पत्नी को लेकर आपको बंबई निकलना है, तो
0: और
1: वही
0: ऑलरेडी वो आपके बिना इतने समय रह चुकी
1: हाँ, क्योंकि आप कितना ही अत्याचार कर लोगे कि अगर आपकी सहूलियत के हिसाब से अगर आप जिंदगी को जाते हैं तो सब कुछ नहीं मिलता। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो करते हैं संघर्ष जैसे सभी लोगों ने किया है। तो माहड़ा में हम लोग रहते थे, मलाड में, और शुरुआती दिनों में काम को लेकर कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हमने थिएटर किया रात दिन अच्छे से, प्रांगण था, हर तरह की सहूलियत हमको मिल जाती थी रहने के लिए, हॉस्टल, हवा, गर्मी लग रही है तो कूलर लग गया, ठंडा पानी खराब हो गया तुरंत बन गया, अब यहां क्या करेंगे। तो यहां पहली बार पता चला कि लाइट बिल आता है 350 रुपया एक वन रूम किचन का, वो भी बहुत मायने रखता है एक हिसाब किताब में। तो ये संघर्ष शुरू किया लेकिन वही मैंने कहा था ना कि पापा की एक बात मुझे वो हमेशा याद रही थी कि लाइफ में कुछ इस तरीके से करो कि आप अभिनय भी कर सको और घर भी तुम्हारा चले उस तरीके से। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ट्रेनिंग क्या है, अपने आप में थिएटर में आपको इतना वो मांझ देते हैं कि आप किसी को थिएटर पढ़ा भी सकते हैं, यानी उतना लेवल का नहीं जैसे वहां के फैकल्टी पढ़ाते हैं लेकिन मोटा मोटा खाका आप किसी को बता सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाती है। तो मैंने एनजीओ सेक्टर पे आकर काम करना शुरू किया और मैं स्ट्रीट चिल्ड्रन और स्ट्रीट प्लेटफॉर्म बॉयज के साथ थिएटर एज अ थेरेपी काम करता था, आगरीपाड़ा, मलाड़ से आगरीपाड़ा जाना। तो पहले ही दिन जब लोकल ट्रेन में मैं चढ़ा तो मैं रो पड़ा क्योंकि एक तो पहले चढ़ने को नहीं मिल रहा था और हमको यही सिखाया कि टाइम पे पहुंचना है कोई भी क्लास में, तो मुझे 150 रुपए पर क्लास मिलता था उसके लिए। तो मुझे लगा कि यार अगर दो क्लास मिल जाए तो रोज का 300 रुपया तो मुझे यहीं से मिल रहा है, यानी महीने का 9,000 रुपए और घर का किराया ये सब मिला के 5-6 हजार में हो रहा था। तो वो संघर्ष के दिनों में मैंने एनजीओ सेक्टर में काम किया और साथ साथ में ऑडिशन देना शुरू किया।

0: जी
1: और
0: जी
1: फिर यात्रा धीरे धीरे सहूलियत के साथ आगे बढ़ने लगी।
0: क्या बात है। तो लोकल ट्रेन में जाके और आप वहां
1: जी
0: सिखाते थे बच्चों
1: जी
0: को,
1: जी
0: वो यात्रा ज्यादा बड़ा संघर्ष थी या वो बच्चों को सिखाना ज्यादा बड़ा संघर्ष था?
1: बच्चों को सिखाना बहुत बड़ा संघर्ष था, क्योंकि यात्रा तो क्या है कि हमको लग रहा था कि ये भीड़ है, लेकिन मुंबई में आपको कहीं पे भी भीड़ दिखाई देगी, कोई ऐसी जगह होगी नहीं जहां भीड़ ना हो। लेकिन हाँ, बच्चों के साथ क्या होता था कि मैं सिखाते सिखाते बहुत सीखता भी रहता था, जैसे तरह तरह के लोग थे, और वही एनएसडी जैसा माहौल वहां पर भी था कि कोई उड़ीसा से एक बच्चा आया है। अब उसमें कुछ केसेस ऐसे होते थे कि कुछ बच्चे हीरो बनने आए थे,
0: लो, अब ये समझाना भी मुश्किल है। अच्छा,
1: और उनको मैं ही समझा रहा हूं क्योंकि मैं भी हीरो बनने आया हूं। तो मेरे लिए तो ऐसा हो गया था कि ये सेल्फ लर्निंग हो रही थी। तो कुछ लोगों को वो एनजीओ ऐसी थी कि वो ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करती थी जो बॉम्बे में बेचारे भटक रहे हैं, है ना, फिर कोई एडिक्शन में घुस गए हैं, तो उनके बच्चों की पहले बातचीत होती थी, तो पता चलता था कि एक बच्चा है जो सलमान खान के घर के बाहर ही सोता था,
0: ओ
1: वो सलमान खान को देखने ही इधर आया था, फिर उसको लगा कि मुझे सलमान खान से अच्छे से मिलना है तो एक्टर बन जाना पड़ेगा।
0: अरे बाप रे,
1: तो ऐसे मेंटालिटी के बच्चों के साथ मैंने वैसे ही काम किए कि फिर उनको जिंदगी का फलसफा समझ में आया, और फिर उनको हमने एक अच्छे ट्रैक पर लेकर गए। उसमें से जो टैलेंटेड लोग थे उनको भी एक्टिंग का भी काम दिया गया, लेकिन वही होता है ना कि टारगेट किस तरीके से सेट करके आते हैं और कैसे लोग आ जाते हैं।
0: तो उनमें से कई लोगों को एक दिशा मिली।
1: दिशा मिली, जैसे कि कई लोगों ने पेपर बैग बनाने का काम शुरू किया, कई लोगों ने पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने का काम शुरू किया, तो वो भी अपने आप में बड़ी बात थी कि जो बेसहारा थे, सड़क पर सोते थे, फुटपाथ
0: अपना
1: पे
0: अपना
1: सोते,
0: काम कर
1: अपना
0: पाए।
1: अपना काम कर रहे हैं। आज वो शादीशुदा है, कुछ लोग आज भी फोन करते हैं, आलोक सर कैसे हैं आप, हमको याद है आपने हमको ये डायलॉग सिखाया था। तो मैंने डायलॉग उनको जिंदगी के लिए सिखाया था कि भाई कोई भी ऐसा एक टोंग ट्विस्टर ले लेते थे, एक ऊंचा ऊंट है पूंछ ऊंची ऊंट की, पूंछ से भी ऊंची क्या पीठ ऊंची ऊंट की, अब इसी को अलग अलग इमोशन में बोलो,
0: यस।
1: तो कोई गुस्से में बोलता था एक ऊंचा ऊंट है पूंछ ऊंची ऊंट की, पूंछ से भी ऊंची क्या पीठ
0: हाँ,
1: ऊंची ऊंट की।
0: अलग
1: तो
0: अलग
1: ये
0: तरह की
1: थिएटर
0: एक्टिंग।
1: एज अ थेरेपी, तो बच्चे हंसते थे, और वही उनके साथ भी एक परिवार जैसा संबंध बन गया था। साथी नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, आज तो शायद वो नहीं है वहां, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करती थी, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि साथी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे शुरुआत में काम दिया, जिससे मैं बॉम्बे में टिका रहा, और फिर धीरे धीरे फिल्मों के ऑडिशन देना जो रोजमर्रा, जो अमरीश पुरी साहब ने जो काम किया होगा वही हमने किया, कि लोगों से
0: जी, वो
1: मिलना,
0: एक प्रोसेस है कि वो
1: वो एक
0: करनी ही
1: प्रोसेस है,
0: पड़ती है।
1: वहां से कोई नहीं बच सकता।
0: तो शुरुआती तौर पर किस तरह के एक्सपीरियंसेस थे जब आप काम मांगने जाते थे? और क्योंकि तब शायद उस तरह से कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं आए थे
1: नहीं
0: और
1: थे,
0: आपको
1: नहीं थे,
0: अपने
1: नहीं थे।
0: फोटोज लेकर और पोर्टफोलियो लेकर जाना
1: जी
0: पड़ता
1: जी जी
0: था।
1: जी मुझे आज भी याद है कि चंदन टॉकीज के पास एक फोटोग्राफर
0: जुहू में
1: था और वो कुछ 100 रुपए की एक तस्वीर निकाल के देते थे,
0: जी
1: और मेरे पास एक ही डेनिम का शर्ट था, जींस का, जो मुझे एनएसडी से ही दिल्ली में ही खरीदा हुआ था, क्योंकि वहां वो सेल वगैरह लगते रहते हैं मंडी हाउस, तो वो पहनकर मैंने उसको कहा कि 5 फोटो भैया हमको कोई ऐसी निकाल दो जिससे लोग समझ जाए कि हम भी एक्टिंग करने के लिए आए। तो पांचों पांच एक ही कॉस्ट्यूम में तो हो नहीं सकती थी,
0: बिल्कुल।
1: तो मैंने कहा कि अंदर हमने एक गंजी पहनी हुई है, दो तीन फोटो शर्ट में निकाल लो, दो तीन गंजी में निकाल लो स्पोर्ट्स लुक पे। तो वो 5 फोटो से हमने हमारी यात्रा शुरू की, और मुझे याद है कि जय माँ संतोषी माँ की फिल्म रिमिक बन रही थी उस वक्त, दोबारा
0: हाँ
1: दोबारा, तो उसमें हमारे एनएसडी के कास्टिंग डायरेक्टर थे परेश पारेख जी,
0: हाँ
1: तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम आ गए, फोन किया उनको, दो चार नंबर लेके निकला था, तो उन्होंने सीधा मुझे दादर बुलाया। अब दादर मेरे लिए अपने आप में वैसा था जैसे हम अहमदाबाद से कहीं,
0: बड़ौदा चले
1: हाँ
0: गए।
1: बड़ौदा चले गए, वैसी यात्रा थी। तो दादर बुलाया और मैं चप्पल पहनकर चला गया, चप्पल भी वो थी बरसाती प्लास्टिक वाली, है ना, उसका एक अंगूठा निकला हुआ था, अब वो अंगूठे को उंगलियों में फंसाते हुए मैं सीढ़ियां चढ़ा कि भाई यहां तक हो जाए। फिर वहां गए तो उन्होंने कहा कि हाँ ऑडिशन दे दो, तो मैं बोला चलो यार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हैं, ऑडिशन तो दे ही देंगे, लेकिन हमसे हो नहीं पाया ऑडिशन, हमको समझ ही नहीं पाया कि वो क्या कह रहे थे, कैसे समझ रहे थे। फिर हमने सिर पकड़ लिया, मैं बोला कुछ तो गड़बड़ है अभी भी, तो ये भी समझना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया क्या है। तो फिर वो परेश भाई ने बहुत प्यार

0: से समझाया कि थोड़ा खुल के करो, थोड़ा तुम टेंशन में हो, सुखद अवस्था में रहो। मैं बोला सर सुखद अवस्था में कैसे रहूं, 3-4 दिन के बाद फिर रेंट देना है ये भी होता है। लेकिन इस तरीके से कारवा चल पड़ा। और पहली फिल्म मैंने की थी टशन, ये भी बड़ी बात है कि यश चोपड़ा की फिल्म में मेरा कास्टिंग हुआ,
1: और ये पहली फिल्म बनी,
0: पहली फिल्म बनी
1: ये
0: मेरी।
1: इसमें कितना संघर्ष करना पड़ा?
0: इसका ऑडिशन ग्रुप में हुआ कि भाई सबको चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म
1: बहुत
0: थी।
1: बड़ी
0: अनिल
1: फिल्म,
0: कपूर,
1: मल्टी स्टार है।
0: हाँ अनिल कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार का एक अलग लेवल। अनिल कपूर उसमें पहली बार नेगेटिव रोल कर रहे थे, विलन, और अक्षय कुमार का नाम उसमें बच्चन पांडे था, और डायरेक्टर थे विक्टर साहब, विजय विजय कृष्ण आचार्य, बहुत अच्छे डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा कि यार वैसे तो रामलीला का सीन है और कोई हनुमान बना हुआ है, कोई भाला पकड़, तो ये जो वो भाला पकड़ने वाली कहावतें जो सुनी थी एनएसडी में कि यार क्या करोगे, भाला पकड़ के खड़े रहोगे पीछे, तो मैं बोला ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों शुरुआत हो रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि यार इसमें से कोई अच्छी लाइन बोलने वाला एक एक्टर चाहिए, तो मैंने हाथ ऊपर कर दिया। मैं बोला सर मैं बोल लूंगा, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा आपको, कि बताओ तो सही आपको आता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल।
0: तो फिर उन्होंने मुझे रामलीला का कोई कैरेक्टर नहीं दिया, बल्कि रामलीला देखने के लिए जो लोग बैठे थे उसमें फर्स्ट रो में मैं बैठा हूं। अब बड़ी बात क्या है, बहुत मजेदार किस्सा है, कि अक्षय जी को जो डायलॉग बोलना था वो उन्होंने मेरी छाती पे लिखा हुआ था, तो प्रिंटआउट उन्होंने मेरी छाती पे लगा दिया। अब मुझे लगा ये मेरे डायलॉग तो नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा ऐसे देखकर। तो फिर का पता चला कि वो अक्षय जी के डायलॉग है, वो आपको भी देखेंगे और प्रिंटआउट को भी देखेंगे। और मेरा डायलॉग था उनके साथ, बढ़िया सा डायलॉग जो उसके बाद भी बहुत हिट हुआ, वो डायलॉग कि वो आते हैं और लड़की को बोलते हैं कि अरे पार्वती तू यहां क्या कर रही, लड़की का नाम पार्वती था लेकिन रामलीला चल रही थी तो वो सीता का रोल कर रही थी। तो फिर मैंने कहा कि अरे भैया वो सीता है, सीता पार्वतिया तो शिव पुराण का हीरोइन है, कहा कुछ भी बोलते हैं ऐसा कुछ। हमने हंसा तो वहां जो एक्चुअल ऑडियंस थी ना वो भी हंसने लगी कि हमने इस तरीके से कुछ डायलॉग बोला। एंड अक्षय जी के साथ बड़ा अच्छा अनुभव रहा, और वो मेरी पहली फिल्म थी। फिर वो रिलीज हुई तो देखने जाना है पहली बार, कि अपने आप को
1: पर्दे पर दिख रहा
0: हाँ
1: है।
0: 70 mm के पर्दे पर कैमरा ये वो, तो फिल्म चली नहीं, लेकिन मजा आया कि हमने अपने आप को देखा कि यार एडिटिंग में कहीं वो सीन कटा नहीं, मैं पूरा दिखा। और मराठा मंदिर में मैंने देखी, तो
1: वाह
0: मराठा
1: वाह,
0: मंदिर अपने आप में एक
1: एक
0: ऐतिहासिक
1: ऐतिहासिक थिएटर है।
0: ऐतिहासिक थिएटर है, तो दिस इज अ थिंग।
1: वाह, और इसके बाद फिर कारवां आगे बढ़ा।
0: हाँ फिर तो वही है कि एक काम से दूसरा काम, लेकिन हाँ संघर्ष तो बीच बीच में चल ही रहा था। ऐसा नहीं है कि एक फिल्म कर ली तो दूसरी कल ही कल मिल जाएगी। आज तक भी हमको फिल्में ढूंढने के लिए थोड़ा वो संघर्ष तो करना ही पड़ता है कि कौन सी जगह पर आपकी जरूरत है, इम्पोर्टेंट ये है। तो यही कह रहे थे ना कि यार तुमको कैसे यश चोपड़ा के वहां से काम मिल गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि तुम तो राम गोपाल वर्मा के एक्टर हो।
1: अच्छा।
0: हाँ एक ये भी होता था ना कि रामू जी के फिल्मों में ज्यादातर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक वो पैटर्न बनी हुई थी, राजपाल यादव जी हो गए और भी एक्टर्स जैसे विजय राज जी हमारे एनएसडी रिपैट्री के। तो ये भी एक बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी कमर्शियल फिल्म में मुझे एक छोटा सा किरदार मिला, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई टशन। फिर आगे तो धीरे धीरे काइपियो छे, काइपियो छे में मैंने सुशांत जी के साथ काम किया, उसमें गट्टू जी डायरेक्टर थे, अभिषेक कपूर, वो बहुत अच्छा उसमें किरदार, धीरे धीरे बढ़ता गया किरदार, और अब ऐसा है कि हमको अच्छे किरदार मिलने लग गए हैं।
1: बिल्कुल। बजरंगी भाईजान में भी आपने काम
0: जी
1: किया?
0: जी जी जी बजरंगी भाईजान का मेरा सलमान जी के साथ काफी अच्छा वो सीन था बस में।
1: हाँ, बस वाला सीन।
0: जी जी
1: बिल्कुल, उसके बारे में बताइए कैसा रहा हो?
0: बढ़िया। उस वक्त दुनिया को बस यही लगता था कि भाई सलमान जी पता नहीं किस तरीके से बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बहुत सहज तरीके से हमसे मिले थे। और उसमें भी यही था कि 3-4 लोग बस में बैठे थे, अब बोले कि डायलॉग बोलने वाला है, फिर हमने हाथ ऊपर कर दिया था। मैं बोला हम बोल लेंगे सर। अब वहां पर भी हमारी सीट के वहां सलमान जी के डायलॉग लिखे हुए हैं।
1: अच्छा, ऐसा भी था।
0: हाँ डायलॉग तो उनके लिखे हुए ही रहते थे, और मैं तो तुगलक के भी याद करके चला गया था डायलॉग,
1: अरे बाप रे।
0: कि जहां कम पड़ जाए तो हम बोल देंगे। तो वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूं
1: तो
0: तुम
1: वहां
0: हाथ
1: करना।
0: करना। तो वो शहरों के सारे नाम मेरे सीट पे लिखे थे,
1: ओ
0: बड़ौदा, बीकानेर, जैसलमेर, ये वो, और उसमें एक शहर मेरा क्यू था।

0: वो मुझे पकड़ना था। तो वो बड़ा मजेदार सीन है, वो कभी आप आज भी वो फिल्म सेटमैक्स पे चलती है तो उस सीन की। और इतना अच्छा भाईचारा हमारा बना कि फिर मैंने जब दूसरी बार ट्यूबलाइट फिल्म में काम किया, सेम डायरेक्टर सेम स्टार, तो वो मुझे पहचान गए सलमान भाई। अरे बोले तुम तो पहले भी काम कर चुके हो ना मेरे साथ में। बोला हाँ सर मैंने बजरंगी भाई। हाँ हाँ कमाल का यार तुम्हारा वो हंसी बहुत अच्छा है, तो उसमें मैंने हंसने का एक सिग्नेचर बनाया
1: जी,
0: था।
1: जी, जी।
0: तो ये है। और उस वक्त वो तीन सेट पर काम कर रहे थे,
1: ओके
0: प्रेम रतन धन पायो,
1: हाँ
0: बिग बॉस
1: हाँ
0: और बजरंगी भाईजान।
1: ओके
0: और एनडी देसाई स्टूडियो था क्योंकि सब नजदीक है, क्योंकि बिग बॉस लोनावाला में था, प्रेम रतन धन पायो वहीं था,
1: और ये करजत में था।
0: हाँ करजत में था। तो उनके साथ खाना वाना भी हुआ, तो बहुत अच्छे से वो खिलाते हैं अपने को एक्टर को, खुद बहुत कम खाते हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कबीर खान सर बहुत प्यार से समझाते हैं एक एक किरदार को, तो हंसी ठल्ले हुए वहां पर भी कुछ उनकी बातों के। जब शूट नहीं कर रहे होते हैं तब भी आप बात करते हैं ना को एक्टर से, तो
1: बिल्कुल
0: सलमान, हाँ तो सलमान भाई से बोले अच्छा है अच्छा है, हाँ गुड गुड ऐसा। तो अब इतना बड़ा एक्टर, आई मीन हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा है सलमान खान। तो बचपन से जिनको मैंने प्यार किया फिल्म में देखा हमने, जिनको हमने बागी फिल्म में देखा, वो किरदार आपके सामने बैठा है आपके साथ एक ही फिल्म में, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत
1: मायने रखता है।
0: रखता
1: जी एक तो ये कि अभी एक गाने की जगह बनाई जाए और उसके बाद आगे की बात करेंगे, तो
0: मैं
1: कौन सा
0: चाहता
1: गाना
0: हूं
1: होगा?
0: बजरंगी भाईजान फिल्म का ही एक गाना हो जाए, भर दो
1: बिल्कुल
0: झोली मेरी,
1: क्या
0: जो
1: बात है,
0: अदनान सामी
1: सुनते
0: ने।
1: हैं अदनान समी की आवाज से।
0: जी।

0: भाई बजरंगी भाईजान की हमने बातें की और फिल्मों में फिर उसके बाद आपका काम आगे जो है वो बढ़ता चला गया और एक तरह से मुंबई में एक जगह बनती चली गई।
1: जी
0: टेलीविजन भी किया और थिएटर की दुनिया में भी आप दोबारा सक्रिय हुए मुंबई में।
1: हाँ
0: ये बातें
1: तो थिएटर तो मैंने कहा ना कि मुझे गुजराती थिएटर से बहुत होप थी शुरुआत से और वो आज भी है मुझे, क्योंकि एकमात्र ऐसा थिएटर है जो आपको रोज एक शो दे रहा है।
0: जी
1: जैसे ही आप ग्रीन रूम में पहुंचते हो अपना कॉस्ट्यूम होते हैं ना, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, कुली फिल्म का बच्चन साहब का डायलॉग, तो वैसा वहां वो ऑर्गेनाइजेशन है उनका, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने थिएटर किया था काफी, सिनेमा करता रहा, टीवी शो के लिए मैंने ऐसे अपने आप को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया मैंने टीवी शो के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब थिएटर मेरे पास है, जो गुजराती थिएटर है, जो पैसों वाला थिएटर है, तो क्यों फिर मैं अपने आप को दो तीन जगहों पर बांटता चला जाऊं। तो फिर मैंने सिनेमा और थिएटर, थिएटर में मैं गुजराती थिएटर, हिंदी थिएटर, अभी लेटेस्ट अभी भी मैं लाइलाज प्ले कर रहा हूं,
0: पंकज त्रिपाठी जी,
1: पंकज त्रिपाठी जी जिसके प्रोड्यूसर है, उनकी वाइफ मृदुला त्रिपाठी, और फैज मोहम्मद ने उसको, वो भी एनएसडी के मेरे जूनियर है, और बड़ा इंटरेस्टिंग म्यूजिकल प्ले है, एक बैंड वालों की कहानी है।
0: हाँ।
1: कितनी गजब कहानी है कि बैंड वाले जो होते हैं वो कई बार अपनी ही गर्लफ्रेंड की शादी में बैंड बजाने चले।
0: अरे बाप रे,
1: दिस इज अ वन लाइन।
0: जी जी जी,
1: तो क्या ये ऐसी ट्रेजेडी है, तो बहुत मजा आता है उनके साथ काम करके, और इतने सहज तरीके से वो आज भी लोगों से हमसे मिलते
0: और बहुत
1: हैं।
0: पुराना आपका तो नाता है, आपके सीनियर रहे हैं।
1: फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर तो समझ लो ना कि वो एक बहुत है आपके, आप टीशु भाई, इरफान भाई, इनका भी ऐसा ही फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर वाला जो रिलेशन होता है।
0: हाँ।
1: ये बहुत मायने रखता है, तो वही मेरे साथ भी हुआ।
0: जी, तो ये जो इन दिनों थिएटर की जो परंपरा है वो फिर से समृद्ध है और फिल्मों के कलाकार भी अब थिएटर की दुनिया का रुख करते हैं और दर्शक भी प्लेस को अलग अलग शहरों में इंतजार करते हैं, देखना चाहते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है और ये कितनी अच्छी परंपरा है कि थिएटर समृद्ध हो रहा है?
1: बिल्कुल, मुझे तो जहां तक लगता है कि आज से 3000 साल पहले भी थिएटर चल रहा था।
0: जी,
1: बिफोर बीसी में, हम बिफोर क्राइस्ट, हम ग्रीक थिएटर की हिस्ट्री वगैरह देखते हैं, तो वहां से लेकर आज तक कभी थिएटर वीक नहीं हुआ है, हम ही कमजोर पड़ गए हैं, करने वाले ही कमजोर पड़े हैं, थिएटर कभी वीक नहीं हुआ है। ये नसीर साहब का भी एक स्टेटमेंट मैंने सुना था, नसीर सर का, कि उन्होंने एक जगह कहा था कि जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर रहा था तब लोग बोल रहे थे कि थिएटर ऑक्सीजन पर है, आज तक भी वो ऑक्सीजन पर, यानी आज तक नहीं मरा।
0: हाँ,
1: तो कैसे
0: ऑक्सीजन, हमेशा ये कहा जाता है ये थिएटर ऑक्सीजन पर है।
1: हाँ, हमेशा कहा जाता है, तो ये एक मिथ जो बना हुआ था वो मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे टूट रहा है और अब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जैसे कि पहले मुंबई में हम सिर्फ पृथ्वी थिएटर में ही एक डिपेंडेंट थे, लेकिन अब नीता मुकेश अंबानी के वहां पर भी कल्चरल सेंटर में ऑडिटोरियम बन गए, बहुत इंटीमेट स्पेसेस सब डेवलप हुई है कि आप चार किरदारों को लेकर एक परसाई जी की कहानी उठा लो और उसको भी नाटक का रूप दे दो। और इसमें सबसे बड़ा रोल है, अगर मैं कहूं ना कि थिएटर घर घर तक पहुंचाने में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो है ही, अब्राहम अलकाज़ी साहब तो है ही, लेकिन उनके जितने भी शिष्य है, उनमें अंकुर जी है, उनमें रामगोपाल बजाज है, रतन थियाम है, बंसी कौल है, इन सब लोगों ने थिएटर की बहुत बड़ी साधना की और उस वजह से आज वो थिएटर हमको हमेशा अपनी तरफ चुंबकीय आकर्षण की तरह वो हमें खींचता है। जैसे कहानियों का रंगमंच,

0: इतनी प्यारी विदा है ये
1: अंकुर जी ने,
0: अंकुर जी की विदा है ये
1: जी।
0: अंकुर जी, महेश आनंद जी, लेकिन अंकुर जी का ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगता था हमको। हमने प्रेमचंद जी की कहानियां भी की थी, जिनेंद्र जी की भी कहानियां की थी, और उनका एक ही था कि जीरो कॉस्ट बजट है इसमें। आपके पास कहानी है और मंच है
1: बस,
0: लाइट अगर हुई तो ठीक है, बोले अगर एक आध हेलोजन जल गया तो ठीक है आलोक, बाकी और कुछ नहीं है। और एक कहानी की हमको तीन तीन ड्राफ्ट बनाने को कहते थे कि पहली कहानी में मैं बड़े भाई साहब बनाऊं, तो दूसरे ड्राफ्ट में मैं छोटा भाई बनूंगा। अब वो छोटा भाई क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, और कहानी का एक भी शब्द आगे पीछे नहीं होना चाहिए,
1: सेम का सेम,
0: सेम टू सेम। तो फर्स्ट टाइम मैंने फील किया कि व्हाट इज द नैरेटिव एक्टिंग एंड व्हाट इज द सब्जेक्टिव एक्टिंग, तो नैरेशन के साथ। तो आज थिएटर अपने आप में एक अच्छा रोल अदा कर रहा है समाज में, और बहुत अच्छी बात है कि बड़े बड़े स्टार फिल्मों में काम करने के बाद भी थिएटर को एज अ अपना वो समझ कर रहे हैं कि हमें और कुछ नया सीखने को मिल जाए थिएटर में।
1: बिल्कुल।
0: और व्हाट इज द थिएटर का कंट्रीब्यूशन फिर सिनेमा में ले जाते हैं।
1: हाँ, तो दोनों तरफ की धाराएं चल रही हैं। आप तो कई भाषाएं जानते हैं, और जाहिर है कि अब फिर ये थिएटर में भी ये काम आते हैं। आपने यहाँ मुंबई में गुजराती थिएटर भी किया?
0: मैंने गुजराती थिएटर किया, मैंने एक हमारी खुद की जो मदर टंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, भांतु बोली बोलते हैं उसको।
1: अच्छा,
0: हम लोग ट्राइबल है एक्चुअली, वो तो
1: घुमक्कड़। ये मराठी का एक प्रकार है, नहीं ये गुजराती का एक प्रकार है,
0: ये अपने आप में है ना, ये राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाती भाषा है।
1: अच्छा,
0: बट ये लोग बंजार यानी घुमक्कड़ रहे, तो कोई गुजरात में स्थायी हो गया, कोई महाराष्ट्र में हो गया, तो वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं मराठी में और गुजराती में, लेकिन जब आपस में मिलेंगे तो उनकी एक विशिष्ट बोली है।
1: अरे बाबा,
0: अगर आप कहे तो मैं उस बोली में ना, मेरी एक फिल्म भी आई है दिल्ली क्राइम सीजन 2।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: वो किरदार मेरा उसी कम्युनिटी के था।
1: तो आपने वो किरदार वैसा बनाया या?
0: नहीं नहीं, मैंने राइटर के साथ डिस्कस किया था, भावेश मांडलिया राइटर जिन्होंने ओ माय गॉड लिखी, तो उनके साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि ये बैक स्टोरी आपकी बहुत अच्छी जा रही है, यानी मैंने अपनी बैक स्टोरी को उस किरदार के अंदर रखा। तो वो भांतु बोली में बात करते हैं, जैसे मुझे बोलना है कि कहां जा रहे हो और शाम तक वापस आ जाओगे ना, अरे की तोड़ जा रहा था सांजा सुधी उल्टा ही जांगड़ा ना। एकदम डिफरेंट,
1: कुछ गुजराती के आ रहे हैं,
0: गुजराती के थोड़े मराठी, तो ये क्या घुमक्कड़ लोगों के ने कभी महाराष्ट्र से कुछ ले लिया, कोई गुजरात से कुछ ले लिया,
1: मिक्स है,
0: कुछ राजस्थान से कुछ ले लिया। तो ये भाषा मुझे आती है, गुजराती भाषा मुझे आती है, हिंदी मुझे आती है, उर्दू जबान भी, यानी कि नुक्ते उकते लग जाते हैं ठीक ठाक। तो ये है, अंग्रेजी व्यवहारिक रूप से जितनी बोल सकता है उतनी मैं बोल लेता हूं
1: जी।
0: तो भाषा मुझे लग रहा है कि एक अभिनेता का सबसे बड़ा वो होता है एलिमेंट, जिसको वो जितना मांझ ले उतना अच्छा है।
1: बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग शहरों में हैं और हमारी इस बातचीत को सुन रहे हैं, उनको लगता है कि एनएसडी जाएं और मुंबई आ जाएं बस लाइफ सेट है।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल,
1: तो
0: नहीं।
1: उनको अपनी तरफ से कुछ कहिए।
0: मैं बस उनको इतना ही कहूंगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपको विधा सिखाता है
1: जी,
0: और प्रोफेशनल विधा सिखाता है, व्यवसायिक रंगमंच की तालीम देता है, लेकिन वो व्यवसायी एक बहुत बड़ा व्यवसायी है।
1: हाँ।
0: तो उस व्यवसाय में आपको आपके ग्राहक खुद ही ढूंढने हैं।
1: हाँ।
0: है ना,
1: और मुंबई शहर आपको पीसता है,
0: पीसता है, जलना पड़ता है। और ये भी नहीं है कि इसमें नकारात्मकता ही भरी पड़ी है
1: जी,
0: कहीं पर आपका कुछ अच्छे काम आप करते हो तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो मैंने ऐसे कई लोगों को देखा कि जो आते हैं और एडिक्शन में भी डूब जाते हैं, है ना, कई और तरह की चीजों में भटक जाते हैं। तो उन चीजों में अगर ना भटके और अगर आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, चाहे फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट से किया हो, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII से किया हो, या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से किया हो, BNA से किया हो, तो प्रशिक्षण का जो एक बल लेकर अगर आप काम करते हो तो सफलता आपको मिलेगी। सफलता को आप ही कैटेगराइज करते हो कि किसको है, जैसे अभी अक्षय खन्ना जी को हम देख रहे हैं धुरंधर फिल्म में।
1: बिल्कुल।
0: तो उन्होंने यही कहा कि सफलता को आप कैसे मापते हो, है ना, कि मुझे आप सलमान खान और शाहरुख खान के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो।
1: बिल्कुल।
0: मैं अपने लेवल पर सफल हूं, तो मुझे लग रहा है कि ये एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ी बात है।
1: क्या बात है, चलते चलते एक गाने की फरमाइश है।
0: शैलेंद्र जी मेरे बहुत फेवरेट रहे
1: जी,
0: और रेणु जी की कहानी पर उन्होंने
1: तीसरी कसम बनाई,
0: तीसरी कसम, उसका अगर आप सुना दे, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में,
1: जरूर ये गाना सुनाते हैं जी।

0: आलोक जी, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी
0: अपना
1: जी
0: समय देने के लिए।
1: जी जी जी धन्यवाद, और बहुत ही शुभकामनाएं हैं विविध भारती को, आप पूरी टीम को, जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं। और क्या बताऊं मैं आपको कि रेडियो सच में हमारी जिंदगी का एक संगीत है, और अगर इंसान को आप किसी एक अरण्य में डाल दे, किसी घोर जंगल में डाल दे जहां सिर्फ निराशा निराशा ही हो, गुफाओं में, और वहां एक रेडियो चल रहा हो ना, तो वो भी, कहते हैं ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एक दिया सारे अंधेरे को भगा देता है। तो
0: बिल्कुल
1: रेडियो घर में ऐसा है जो हमारी नकारात्मक शक्ति को बाहर फेंकता है और एक रचनात्मक ऊर्जा को हमारे घर में लाता है।
0: क्या
1: तो
0: बात है,
1: रेडियो यंत्र घर में रहना वो ऐसा ही है जैसे एक परिवार का सदस्य आपके साथ रह रहा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभिनेता आलोक गागड़ेकर से यूनुस खान की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: कुछ दिल ने कहा,
2: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
3: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
3: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
3: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
2: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगति

0: उन्होंने आज निर्मल जिले के ओटनूर गर्ल्स आश्रम स्कूल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ITDA के तहत आने वाले स्कूलों में तलबा को मियारी यूनिफॉर्म, जूते, किताबें और दीगर ज़रूरी सहूलतें फराहम करना हुकूमत अपनी जिम्मेदारी समझती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आश्रम और गुरुकुल स्कूलों को कारपोरेट स्कूलों के मसावी तरक्की देने के लिए इकदाम कर रही है। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राजश्री शाह और दूसरों ने शिरकत की। मंचर्याल जिले के मंदामरी और बेलमपल्ली में जूनियर सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अदालतों का आज हाईकोर्ट के जज जस्टिस नागेश भीमापाका ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर मंदामरी में खिताब करते हुए हाईकोर्ट के जज जस्टिस नागेश भीमापाका ने कहा कि मसाइल को पुरसुकून अंदाज में गौर व फिक्र के जरिए हल किया जा सकता है। उन्होंने अदालतों में मुकदमात की समाअत मुलतवी होने की मुद्दत कम करने और मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने के लिए मौसर इकदाम करने की हिदायत दी। बाद अज़ा उन्होंने बेलमपल्ली पहुंचकर वहां अदालतों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक मरतबा फिर सुन लीजिए। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में अराजियात के मामलों पर कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि वो सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर रियासत के मफादात के लिए मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। रियासती वजीर हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि गरीबों के अपने घर के ख्वाब को पूरा करके उनके खुद एतमादी और वखार में इजाफा करना अवामी हुकूमत का मकसद है। और वजीर ए लक्ष्मण कुमार ने कहा है कि गरीब और कबाली तलबा को मियारी तालीम के साथ साथ बेहतर सहूलतें फराहम करना रियासती हुकूमत का अहम मकसद है। इसी के साथ ही आकाशवाणी हैदराबाद से उर्दू में इलाकाई खबरें यहीं खत्म हुईं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन अनेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया और प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा हुई। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामिन मैलिएट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। यह दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक कल विशाखापट्टनम में होगी। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पहला जहाज एमटी सीबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुटलैंड तट के पास अगवा किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पहले कैथोलिक संघीय मंत्री और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक शहबाज भट्टी की हत्या के 15 साल बाद भी ईसाई, हिंदू और अहमदिया सहित अल्पसंख्यक समुदाय देश भर में भेदभाव और धार्मिक स्थलों पर हमलों का सामना कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया संस्थान पीजे मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अत्याचारों में अपहरण, जबरन धर्मांतरण और बाल विवाह शामिल हैं। रिपोर्ट में इश्निंदा कानूनों के दुरुपयोग का भी उल्लेख है। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर दो श्लोकों

0: के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पाठ रोकने का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी आलोचना की।
1: आज इस प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ को

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना और लोगों, विशेषकर युवाओं को सेवा कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की। और खेलों में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से जारी है। महिला डबल्स के पहले गेम में भारतीय जोड़ी ने अपने नाम किया है। यह मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच अम्स्टरडैम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: तरह के खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। आलू, साबुदाना, चावल, साबुत अनाज, पास्ता, रोटी, मक्का आदि में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है तथा यह पाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वसा या फैट हमारे आहार का मुख्य घटक है और शरीर में कई काम करता है। इसके आवश्यक स्रोत में डेयरी प्रोडक्ट, मांस, बीन्स और नट तथा वनस्पति तेल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल है। फैट फैटी एसिड्स में पच जाता है, जिसका उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। पानी को भी हम न्यूट्रिशन में शामिल करते हैं। शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना है। यह पर्याप्त पानी पीने से शरीर में तरल संतुलन को बनाए रखने में सहायता मिलती है, जो शरीर में पोषक तत्वों को परिवहन में मदद करते हैं, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और भोजन को पचाने में सहायता करती है। इसीलिए कभी अपने शरीर में पानी की कमी न आने दे। किसी भी सजीव के लिए पोषण जरूरी है, इसके लिए शरीर क्रियाएं संभव नहीं है। जिस प्रकार से किसी वाहन के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। आवश्यक ऊर्जा के विभिन्न अवयवों मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। भोजन शरीर की वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त अंगों एवं ऊतकों की मरम्मत में योगदान करता है। इस कार्य को प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन आदि सम्मान करने में योगदान करना है। भोजन शरीर के विभिन्न अंगों एवं जंतुओं को उचित दशा में बनाए रखता है और उनका उचित संचलन कर उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने में योगदान करता है। संतुलन भोजन शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। आमतौर एक ह्यूमन बॉडी को उसकी उम्र और जैविक क्रियाओं के अनुसार पोषक तत्वों की जरूरत होती है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वर्कर्स के लिए अलग अलग मानक तय किए गए हैं और इन्हीं मानक के अनुसार व्यक्ति को अपने भोजन में पोषक तत्वों को सम्मिलित करना है। स्वस्थ भोजन करने से सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि आपका दिमाग भी तेज होता है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना खाने से शरीर मजबूत होता है। स्वस्थ आहार हड्डियों को मजबूत रखता है। पौष्टिक भोजन गर्भावस्था के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हरी सब्जियों और फल मोटापा, कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग जैसी गंभीर शारीरिक समस्याओं से बचाव करते हैं, खासकर वो खाद्य पदार्थ जिसमें फाइबर की अधिक मात्रा होती है। जितना हो सके तेल मसाले वाले खाद्य पदार्थ के सेवन से बचें। इनको लगातार सेवन करने से तरह तरह के बीमारियां आ सकती है। पानी खूब पिए। शरीर में पानी की कमी निर्जलीकरण का कारण बनती है, दैट इज डिहाइड्रेशन, जिससे किडनी की समस्या, त्वचा संबंधी समस्या, उल्टी, बुखार और कई अन्य परेशानियां हो सकती है। शुगर शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन ज्यादा शुगर युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे दांत खराब हो सकते हैं, मोटापा, डायबिटीज जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती है। उपवास करना शरीर के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, साथ साथ शरीर की कई अन्य समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। हालांकि उपवास के दौरान आप नियमित रूप से पानी पीते रहे, फल, ड्राई फ्रूट का सेवन कर सकते हैं, आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। तो दोस्तों, with this we come to the end of this beautiful program which was very informative. I'll get back to you in our next segment. Till then, have a great time. Bye.
1: Dosto, aapke sujhav, salah aur feedback ke liye aap hame call ya message kar sakte hain. Hamara number hai 09515227039. I repeat, 09515227039. Hamara email ID hai feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
2: మీరింతవరకు లంహే ప్రాయోజిత కార్యక్రమం విన్నారు.

दार्जिलिंग से लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट राजू बिष्ट ने बताया कि ये मीटिंग बहुत मुफीद रही और सभी गोरखा रहनुमाओं ने तामीरी अंदाज से अपने मामलात पेश किए। इन रहनुमाओं की बात सुनने के बाद वजीर आला शोभेंदु अधिकारी ने भी मुतालिका मामलात पर अपने ख्यालात और अहद का इजहार किया। मीटिंग के बाद वजीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया कि मामलात को हल करने के लिए आला सतह की एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी सरबराही बीएसएफ के साबिक डायरेक्टर और कौमी सलामती के नायब मुशीर राबताकार पंकज सिंह करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क की मशरकी सरहद से मुत्तसिल हिस्से में सिक्योरिटी से मुतालिक बंदोबस्त के जायजे के लिए एक मीटिंग भी की, जिसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन्स नेक भी कहा जाता है, यहां सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने पर खासतौर से तवज्जो मरकूज की गई। जनाब शाह ने रियासत के अपने दौरे के तीसरे और आखिरी दिन सिलीगुड़ी के मजाफात में सुकना में मगरबी बंगाल के सीनियर अहदेदारान और मरकजी सिक्योरिटी अफवाज के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में सरहद पर निगरानी को मुस्तहकम करने और मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस, खुफिया एजेंसियों, रियासती पुलिस और इंतजामिया के दरमियान तालमेल को बेहतर बनाने और मुजवजा सेरुखी सिक्योरिटी ग्रिड की खातिर तरीकाकार तैयार करने पर खसूसी बातचीत हुई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी होने चाहिए। आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स आलमी लीडर्स फोरम में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के रिश्ते के फरोग के लिए इसे बाहमी मफाद की कसौटी पर खरा उतरना होता है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ मस्बत, तामीरी और दूरअंदेशी पर मबनी ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, जिसमें एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखा जाए। वजीर खारजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान दुनिया का एक अलग ही तरह का मुल्क है, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा मुल्क नहीं है जो हमसाया मुल्क पर हमला करने और दबाव डालने के लिए दहशतगर्दी को इस कदर मुनज्जम तरीके से इस्तेमाल करता हो। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज यूनान के अपने हम मनसब जॉर्जियोस गेरापेट्रिट से टेलीफोन पर बात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉ जयशंकर ने कहा कि तरफेन ने मौजूदा जोग्राफियाई और सियासी वाकयात पर तबादला ख्याल किया और राबते में रहने से इत्तेफाक किया। ब्रिक्स मुल्कों के नौजवानों के उमूर से मुतालिक वुजरा के एलामिये को इख्तियार किए जाने के साथ ही आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स ममालिक के नौजवानों के उमूर के वुजरा की मीटिंग इख्तिताम पजीर हो गई। इस मीटिंग में ब्रिक्स ममालिक के दरमियान नौजवानों के इश्तराक के सिलसिले में पेशरफ्त का जायजा लिया गया और तालीम, हुनरमंदी, एंटरप्रेन्योरशिप, इख्तरा और समाजी तरक्की में नौजवान अफराद की खातिर इम्कानात में वसअत पैदा करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका एलामिये में तालीम, तरबियत और हुनरमंदी, साइंस और टेक्नोलॉजी, सेहत और खेल, माहौलियात और पायदारी, समाजी और सकाफती शिरकत, रजाकाराना तौर पर काम करने, गरीबी को कम करने, बैन अकायद बातचीत और नौजवानों की शमूलियत जैसे अहम शोबों का अहाता किया गया। मीटिंग की सदारत करते हुए नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि नौजवानों को मुस्तकबिल को समत देने में शराकतदार बनना चाहिए। विकसित भारत 2047 के लिए भारत के नजरिए का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस विजन को हकीकत की शक्ल देने में मदद करने की खातिर ऐसे 1,00,000 नौजवान रहनुमाओं को तैयार करने पर जोर दिया है जिनका कोई सियासी पसे मंजर ना हो। इस मौके पर डॉ मांडविया ने जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसबों के साथ दोतरफा मीटिंगें कीं ताकि नौजवानों के उमूर और खेल, खासतौर से हुनरमंदी, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल राबते और नौजवानों के तबादले से मुतालिक प्रोग्रामों में इश्तराक को मुस्तहकम किया जा सके। यह मीटिंग ब्रिक्स ममालिक के दरमियान नौजवानों के इश्तराक और शराकतदारियों की जानिब एक अहम कदम भी साबित हुई। ओडिशा में एक मरतबा फिर दूर दूर तक बारिश होने का इम्कान है, जबकि मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों में सैलाब का पानी अब भी पूरी तरह कम नहीं हुआ है। भारतीय महकमे मौसमियात ने आइंदा दिनों में रियासत भर में बारिश की पेशगोई की है और शिमाली ओडिशा के हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है।
ایک بار پھر بارش کی پیشگوئی سے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں تشویش بڑھ گئی۔

0: गई है, जहां 13 लाख से ज्यादा अफराद पहले ही सैलाब से मुतासिर हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: खलीजे बंगाल में एक बार फिर मौसम में तब्दीली के पेश नज़र बारिश में इजाफा होने का इम्कान है और उड़ीसा में फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। आईएमडी भुवनेश्वर ने मुख्तलिफ अजला में कई मकामात पर हल्की से औसत बारिश की पेशगोई की है। केउंझर, मयूरभंज, कालाहांडी और नबरंगपुर में शदीद बारिश के लिए येलो अलर्ट, जबकि इस माह की 24 और 25 तारीख को केउंझर और मयूरभंज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान सैलाब की सूरत हाल रफ्ता रफ्ता बेहतर हो रही है, लेकिन शुमाली उड़ीसा में चैलेंज बरकरार है। 7 अजला में 13 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हैं, जबकि 4 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। राहत बचाव और बाजाबादकारी की कार्रवाइयां जारी हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: सुप्रीम कोर्ट ने समाधान समारोह पहल के तहत मुनक्किदा 3 रोजा खसूसी लोक अदालत के पहले दिन 400 से ज्यादा केस निपटाए। इनमें शादी ब्याह और जायदाद के तनाजियात, मोटर गाड़ियों के हादसों से मुतालिक दावे, जमीन तहवील में लिए जाने, मुआवजे के मामलात, टैक्स तनाजियात और अदालत आलिया में जेरे इल्तवा सर्विस और लेबर केस शामिल हैं। खसूसी लोक अदालत की कार्रवाई कल तक जारी रहेगी। सरकार ने एक सरमायाकारी स्कीम को प्रमोट करने से मुतालिक ऑनलाइन सर्कुलेट होने वाले मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के एक फर्जी वीडियो को खारिज कर दिया है। छेड़छाड़ करके बनाए गए इस वीडियो में लोगों से 22,000 रूपये की इब्तदाई सरमायाकारी के साथ हर हफ्ते 5.5 लाख रूपये की यकीनी आमदनी का वादा किया गया है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के हकायक का पता लगाने से मुतालिक यूनिट ने कहा कि यह वीडियो फर्जी है और यह एआई की मदद से तैयार किया गया है। उसने ये वजाहत भी की कि वजीर खजाना ने इस तरह के किसी भी सरमायाकारी प्लेटफॉर्म या स्कीम की तायीद नहीं की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अमरीकी डॉलर और भारतीय रूपये के ताल्लुक से गैर मुल्की जर्रे मुबादला के एक दूसरे से तबादला करने की उसकी खसूसी सहूलत के तनाजुर में इस महीने की 21 तारीख तक 72 अरब 85 करोड़ अमरीकी डॉलर का गैर मुल्की जर्रे मुबादला मौसूल हुआ है। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीतकर तारीख में अपना नाम दर्ज करा लिया है। वो आलमी चैंपियनशिप में तमगा जीतने वाली खवातीन डबल्स में ज्वाला गुट्टा और अश्वनी पुनप्पा के बाद दूसरी जोड़ी बन गई है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ियों की जोड़ी सेमीफाइनल में आला दर्जे की दिफाई चैंपियन चीन की लियू शेंग और तान निंग की जोड़ी से हार गई। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-18 से जीता, लेकिन बाद में चीन की जोड़ी ने उसे अगले दो गेम्स में 21-13, 21-8 से हरा दिया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बीजेपी के नए अहदेदारों के साथ गुफ्तगू की और तंजीम को मुस्तहकम बनाने और अवाम के साथ राबते बढ़ाने पर जोर दिया। मरकज ने सिलीगुड़ी में सरकर्दा गोरखा रहनुमाओं के साथ वजीर दाखला की आला सतह की मीटिंग के बाद गोरखा मामले को हल करने के लिए आला सतह की कमेटी बनाए जाने का ऐलान किया है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश ताल्लुकात बाहमी मफादात पर मबनी होने चाहिए। बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर पूरे मुल्क में एक माह तवील सेवा संकल्प अभियान चलाएगी, ताकि अवामी खिदमत के तहत उनके अहद को उजागर किया जा सके। ब्रिक्स मुल्कों के नौजवानों के उमूर के बुजुर्गों ने तालीम, हुनरमंदी, अपने कारोबार, इख्तरा और समाजी तरक्की में नौजवान अफराद के लिए मौकों को वसत देने की खातिर मुश्तरक बयान मंजूर किया है। ओडिशा में खलीज बंगाल के ऊपर मौसम की तब्दीली के जेर असर बारिश का जोर बढ़ने से सैलाब से मुतासर जिलों के लिए तशवीश पैदा हो गई है। और बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय खवातीन की डबल्स जोड़ी ने कांसे का तमगा जीतकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: हस्ती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्कार।
1: तुम काला बाजार किसके लिए करते थे? रघुवीर के लिए।
2: रघुवीर के लिए?
1: जुर्म करने वाला चूंकि अपना बचाव नहीं करता और साफ अपने जुर्म को कबूल कर लेता है, तो इसी से वो रहम का हकदार नहीं हो जाता। ये वर्ष आज तक जो कानून को दगा देता रहा, अचानक आज वो शहीद बनने चला है। ये तो वही बात हुई कि 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। हमारा ही खून चूस चूस कर जो पलता रहा, अचानक आज वो अपना खून हमें दान करने चला आया है। कड़ी से कड़ी सजा अदालत अगर ऐसे आदमी को नहीं देगी तो और किसे देगी?
0: ये आवाज फिल्म काला बाजार में उस मशहूर अदाकार की है जिसे दुनिया जानती है किशोर साहू के नाम से। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक किशोर साहू पर।

गुजरे दौर के सिनेमा के चहेते दर्शकों के लिए किशोर साहू एक सुपरिचित नाम है। बहुआयामी प्रतिभा के कलाकार किशोर साहू ने 1937 से 1980 के बीच 22 फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1915 में तब के मध्य भारत और आज के छत्तीसगढ़ प्रांत के दुर्ग शहर में जन्म हुआ था किशोर साहू का। नागपुर के मॉरिस कॉलेज से उन्होंने बीए की पढ़ाई की थी। किशोर साहू के पिता रायगढ़ रियासत के दीवान थे। कॉलेज के दिनों से ही किशोर साहू कहानियां लिखा करते थे। अपने कहानी लेखन से ही वो सिने जगत के संपर्क में आए। तब के बंबई में उन्हें सिने जगत में पांव जमाने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ी। मुंबई में अशोक कुमार और देविका रानी के प्रयासों से किशोर साहू को बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म जीवन प्रभात में काम करने का मौका मिला। किशोर साहू ने कुछ अरसा मुंबई में और बिताया और फिर परिस्थितियों के चलते वापस नागपुर लौट गए। नागपुर में किशोर साहू के मित्र थे द्वारकादास डागा। उन्हीं के सहयोग से किशोर साहू ने बाद में मुंबई वापस लौटकर अपनी फिल्म निर्माण संस्था की नींव रखी। इस संस्था का नाम था द इंडिया आर्टिस्ट लिमिटेड। अपने इस बैनर तले उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई बहुरानी। अपने फिल्म बैनर तले किशोर साहू ने जो कुछ और मशहूर फिल्में निर्मित की उनके नाम हैं पूनम की रात, पुष्पांजलि, मयूर पंख और बेटी नैना साहू को लेकर बनाई गई फिल्म हरे कांच की चूड़ियां।

किशोर साहू अभिनेता, निर्माता, निर्देशक बनने से पहले लेखक थे। कहानी लेखन पर उनकी अच्छी पकड़ थी। उनकी ये प्रतिभा कई फिल्मों में नजर आती है। एक लेखक के रूप में उनकी चर्चित फिल्में हैं मयूर पंख, दिल अपना और प्रीत पराई, हरे कांच की चूड़ियां, औरत और तीन बहुरानियां। इस फिल्म की कहानी एक मध्यवर्गीय संयुक्त परिवार, उसकी आर्थिक स्थिति और परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों को रेखांकित करती है। दिल अपना और प्रीत पराई का लेखन करने के साथ साथ किशोर साहू ने इस फिल्म को निर्देशित भी किया था। इस फिल्म के गीत आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

0: निर्देशक के रूप में किशोर साहू की अन्य मशहूर फिल्में हैं 1942 की कुंवारा बाप, राजा, शरारत, वीर कुणाल, सिंदूर, साजन, 1948 की नदिया के पार, सावन आया रे, काली घटा, मयूरपंख, हैमलेट, किस्मत का खेल, बड़े सरकार, गृहस्थी, घर बसा के देखो, हरे कांच की चूड़ियां, पुष्पांजलि, धुएं की लकीर और पूनम की रात।
1: तो

फिल्म निर्देशक महेश कौल और साहित्यकार अमृतलाल नागर किशोर साहू के अभिन्न मित्रों में से थे। नागर जी ने किशोर साहू के लिए तीन फिल्में लिखी थीं, राजा, वीर कुणाल और कुंवारा बाप। फिल्म वीर कुणाल की नायिका थीं अभिनेत्री तनुजा और नूतन की मां शोभना समर्थ। सन 1942 में बनी फिल्म कुंवारा बाप और सन 1943 में बनी फिल्म राजा हास्य प्रधान फिल्में थीं। इनमें स्वयं अमृतलाल नागर जी ने भी अभिनय किया था। किशोर साहू एक समर्थ अभिनेता थे। यूं तो उनके अभिनय से सजी कई फिल्में हैं, लेकिन जिन फिल्मों में उनके अभिनय को बहुत सराहना मिली उनमें से ही एक है फिल्म गाइड में किशोर साहू द्वारा निभाई गई रोजी बनी वहीदा रहमान के पति मार्को की भूमिका। ये गीत है फिल्म काली घटा का।

22 अगस्त सन 1986 को इस दुनिया में अपने जीवन रूपी रंगमंच की आखिरी भूमिका निभाकर किशोर साहू इस दुनिया से विदा हो गए। हमारे पास अब उनके अभिनय से सजीव फिल्में हैं और उनके परिजनों इष्ट मित्रों के पास हैं उनकी स्मृतियां।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक किशोर साहू पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का। संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।